मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय

0: बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

देश प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति सम्मान, सेवा और समर्पण की भावना है। अपने देश की संस्कृति, भाषा और वीर जवानों का आदर करना ही सच्चा देश प्रेम है।

विघ्नहर्ता भगवान गणपति बुद्धि, ज्ञान और शुभता के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान गणपति हमें धैर्य, विनम्रता और सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का स्मरण करें।

शनिदेव को न्याय और कर्म फल के देवता माना जाता है। वे सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीवन फल प्रदान करते हैं। उनका स्वभाव गंभीर और न्यायप्रिय माना जाता है। शनिदेव हमें सत्य, मेहनत, अनुशासन और धैर्य का संदेश देते हैं। सच्चे मन और अच्छे कर्मों से उनकी कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख और संतुलन बना रहता है।

हमारी अगली भक्ति रचना जीवन का गहरा सत्य बताती है। यह शरीर एक नगर की भांति है और आत्मा उसमें परदेसी प्रियतमा की तरह है। कबीरदास जी हमें भीतर झांकने, आत्मा की आवाज सुनने और माया से ऊपर उठने के संदेश देते हैं, ताकि जीवन में सच्चे प्रेम और ईश्वर का अनुभव हो।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: भक्ति और प्रेम मानव हृदय की अत्यंत पवित्र और गहन भावनाएं हैं। दोनों का संबंध सीधे मन और आत्मा से होता है। भले ही भक्ति ईश्वर से जुड़ी हो और प्रेम मनुष्य से, भक्ति और प्रेम मूलतः एक ही भावना के दो रूप हैं। जब प्रेम ईश्वर की ओर प्रवाहित होता है तो वो भक्ति कहलाता है, और जब वही भावना मनुष्य की ओर होती है तो प्रेम कहलाती है। भक्ति का अर्थ है पूरे मन से ईश्वर पर विश्वास करना और उनसे जुड़ना। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करता है, उनका नाम जपता है और अच्छे कर्म करता है तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति से मन को शांति मिलती है और इंसान सही रास्ते पर चलता है। और प्रेम का अर्थ निस्वार्थ भाव से किसी को चाहना होता है। प्रेम में अपनापन, समझ और सम्मान होता है। जब हम दूसरों की खुशी चाहते हैं और उनके दुख में साथ देते हैं, वही सच्चा प्रेम है। भक्ति में प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेम के की गई भक्ति केवल दिखावा बन जाती है। जब इंसान प्रेम से भरे मन से ईश्वर को याद करता है, उनकी सेवा करता है, तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। प्रेम भक्ति को जीवंत और पवित्र बनाता है। इसी प्रकार प्रेम में भी भक्ति छिपी होती है। जब हम किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उसके सुख दुख में साथ देते हैं, तो वह भी भक्ति का ही रूप होता है। ऐसे प्रेम में अहंकार नहीं होता, बल्कि समर्पण होता है। भक्ति और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति प्रेम के बिना अधूरी है और प्रेम भक्ति के बिना। भक्ति और प्रेम में मूलतः कोई भी भिन्नता नहीं है। दोनों ही निस्वार्थ, समर्पण और विश्वास से जुड़े भाव हैं। भक्ति प्रेम का आध्यात्मिक रूप है और प्रेम भक्ति का मानवीय स्वरूप। जब हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा किसी से जुड़ जाती है, तब वही भावना कभी प्रेम कहलाती है और कभी भक्ति। जिस प्रकार मीराबाई का कृष्ण के प्रति भाव प्रेम से परिपूर्ण, एकदम निस्वार्थ और समर्पित था। उन्होंने समाज और परिवार की परवाह किए बिना केवल अपने भगवान को अपना सर्वोच्च प्रिय माना। उसी प्रकार सूरदास का कृष्ण के प्रति भाव वात्सल्य और दया से भरा था, जो प्रेम और भक्ति का सम्मिलित रूप था। भक्ति के बिना न प्रेम है, प्रेम बिना न भक्ति, दोनों मिलकर ही बने जीवन की है शक्ति। भक्ति और प्रेम को जीवन में अपनाने से इंसान का जीवन सरल और सुखमय बनता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं, तो भक्ति अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। वहीं प्रेम तब जागृत होता है जब हम सबके साथ दया, सम्मान और अपनापन रखते हैं। भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है और प्रेम हमें इंसानियत सिखाता है। इन दोनों को जीवन में शामिल करने से मन शांत रहता है, रिश्ते मधुर बनते हैं और समाज में सौहार्द बढ़ता है। कहा भी गया है, प्रेम से जो नमन करे भक्ति हो साकार, अहंकार जब छोड़ दे खुल जाए हर द्वार। भक्ति और प्रेम मिलकर हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं।
0: तो ये था आज का चिंतन।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: खेती की बातें, इसमें मिट्टी परीक्षण के बारे में जानकारी देंगे वाचन संध्या कोठारी।
3: किसान भाइयों, राम राम। खेती का काम करा हम, और आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि हम दिन भर काम करें और हमारा भी शरीर में किसी चीज की कमी हो तो हमको वो लक्षण मालूम पड़ जाए कि हमको कायु है रोज, और फिर हम ओकी पूर्ति करी लेवाएं। तो ऐसी हमारी जो धरती माता से जो मिट्टी छे, ओमा हम तीन तीन बार खेती कर लेवाएं, साल भर में तीन तीन बार हम अनाज उगे लेवाएं, तो निश्चित रूप से ओका में भी कहीं ना कहीं की कभी न कभी कमी होती होगी ना। साथ में आपको यो भी बता दूं कि मिट्टी में कमी का साथ साथ कई चीज न कोई अधिकता भी हो और कोई कमी भी हो जाए। कई बार किन्हीं फसल का लेन कुछ चीज ज्यादा हुई गई, कुछ चीज कम हुई गई। तो हमारा किसान भाई मंडल से हमारा यो निवेदन छे कि हम जब भी खेती बाड़ी का काम करा, मिट्टी परीक्षण करा डी लेना चाहिए। पहले तो मिट्टी परीक्षण भी करा लेवा, और हमारा किसान भाई मंडल को यो भी हम कहूंगा कि बदलती हुई हमको फसल भी लेनी चाहिए। असो नहीं करा कि एक खेत में सदा का सदा गेहूं बने बोई रहा तो गेहूं लेता रहा, ओमा दूसरा सीजन में हम मक्का भी ले लेवा, ज्वार भी ले लेवा, बाजरो भी ले लेवा, और एका अलावा भी भाई हूँ समय समय पर जानकारी लेना, जानकारी का साथ अगर हम दूसरी फसल जो अच्छी आमदनी की हो वह भी हम ले सकें। आपको एक उदाहरण कलन बताऊँ कि जैसे औषधि फसल न छे, दो चार साल में एक बार कभी हम औषधि फसल ले लेवा तो वह औषधि फसल किलो से बिकज और भाव वह कुंटल को देज, तो हमारी दो चार साल में कहीं ना कहीं तो हमारी पूर्ति वह करी दे। तो मिट्टी परीक्षण हम जरूर कराना। अब मिट्टी परीक्षण को आप कहूँ बते दो कि किस प्रकार से हमको करानी चाहिए, हालांकि आप सब न का मालूम छे, पर फिर भी जानकारी लेने काम करा तो अच्छो काम हो। हम खेत में जावा और हमारा जिना खेत में खेत भी दो दो चार चार हो, खेत बड़ो भी रज, वो हम आधा खेत में कुछ बोवान आधा खेत में कुछ बोवान, तो हमको जिस खेत में जो चीज जितना हिस्सा में लगावनी उतरा हिस्सा की चारी कोना की पहले तो मिट्टी लेवा, और बीच में से भी मिट्टी लेवा, पांची मिट्टी का जो ढेरी छे ओक मिलावा, और मिलावना के बाद ओका मिट्टी परीक्षण का लेना वैज्ञानिक का है दे देवा। उन्हीं मिट्टी में दो चार दिन में हमको मालूम पड़ जाएगा कि किन्नी उर्वरा शक्ति की एमा कमी छे। भाई होन उन्हीं थैली में नाम पतो और अपना अपना खेत का जो कहता है वाड़ी कमा खोदरियो कमा कि या इना गांव वाली वाड़ी कमा जो नाम लिखा उना नाम की स्लिप भी होगा हम बाहर से लगे रखा, ताकि जब मिट्टी परीक्षण हुई ना आवे तो हमको मालूम पड़ जाए कि यह हमने कहाँ की दी थी। कई बार गड़बड़ हो जाए कि कहाँ की दिन कहाँ की आई गई, अब यह कहाँ की समझा, तो हम ऐसी इस प्रकार से देवा। अने जब वह हमारे पास आई जाए कि किस चीज़ की कमी छे तो वह चीज़ हम उन्हें खेत में डाला, अन ओका बाद ज हम बुआई करा, और बुआई करने का बाद ज हम फसल लेवा। भाई हम औषधि फसल की बात कह रही थी, हम यह जरूर लगावा वैज्ञानिक की सलाह से लगावा, और किस समय लगावनी चाहिए यह भी हमको जानकारी होनी चाहिए, कितना एकड़ में कितनी लगावा और कितनी लगावने से कितनी फसल हमारी हमको प्राप्त होगी, हमको ओका में पैसों कितो मिलेगा, और एका अलावा भी भाई होन हमको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि मंडी कहाँ छे। अगर मंडी की जानकारी भी हमको होएगा तो हम हमारी फसल को व्यवस्थित जगह भी ले जावांगा और उसको बेचने भी आवांगा, और समुचित मूल्य भी उसको लेना हम घर आवांगा। तो मिट्टी परीक्षण से लगई ना फसल को बेचने तक की अगर हमारा पास जानकारी छे तो भाई होन यो मानी ने चलो कि हम हमारो काम बहुत अच्छा तरीका से करी रहे, और इसी प्रकार से काम करा और अधिक लाभ भी कमावा। तो मारा सबे किसान भाई बहनों से आज मारो योज करनो छे।
2: खेती की बातें, इसमें मिट्टी परीक्षण के बारे में जानकारी दे रही थी संध्या कोठारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था लता मंगेशकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल। इसमें हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत। सुबह 8:30 कंपेयर्ड फिल्म संगीत होगा। लोक संगीत में सुबह 9:00 आपको सुनवाएंगे ललतू मालाकार और साथी के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में शाम 6:30 पर सुनिएगा नीलम साहनी को। सुबह 9:10 पर पीपल्स पद्मा का 30वां एपिसोड हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 आपको सुनवाएंगे विनायक वोरा का गाया राग रामकली। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन सुनिएगा सुबह 10:05 से। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दिन में 11:00 होगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:00 और दिन में 2:00। दिन में 12:30 पर होगा संग्रहालय से कार्यक्रम। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत सुनिएगा दिन में 1:45 पर। दिन में 2:30 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:00। इसमें आज का क्रम होगा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 5:45 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। शाम 6:00 आपको सुनवाएंगे एक विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। शाम 6:45 पर लोक संगीत में सुनिएगा ललतू मालाकार और साथी को। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण समय शाम 7:20। इसमें आज की बात होगी अटल पेंशन योजना के बारे में। साथ ही होगा कवि प्रकाश चंद्र दुबे का कविता पाठ और आपको सुनवाएंगे लोक संगीत। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया होगा रात 8:15 से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत आप सुनेंगे रात 9:15 पर। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 से। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

दौर केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तिमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्र संघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकि संघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा
2: मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्य दिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आन्ध्रप्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्।

0: 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा,
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 47

0: शहरों में एक साथ होगा आयोजन। देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त, पेट्रोलियम मंत्रालय की लोगों से अपील, खपराहट में ईंधन न खरीदें। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का हुआ आयोजन। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जीडीपी का आधा हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पति समर सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित होगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव को तेल कंपनियां निगरानी और समन्वय से दूर कर रही हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन ना खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े।
1: तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर वन का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलों को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है, अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों मंत्रालयों में 10-10 अधिकारियों की टीम बनाने का निर्देश दिया जो नागरिकों की शिकायतों की भी रोज समीक्षा करेगी। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव लेने के लिए कल ucc.mp.gov.in नाम से वेबसाइट लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में इस वेबसाइट का विमोचन किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे पारिवारिक कानूनों पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसका पति समर सिंह कल शाम जबलपुर जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। त्रिशा की मौत के बाद से वो फरार था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद उसने आत्मसमर्पण किया। वहीं दूसरी तरफ कल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। त्रिशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एनटीए की विशेषज्ञ मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, पुणे, लातूर समेत कई शहरों में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने लातूर के 2 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। इन पर बच्चों के लिए लीक पेपर खरीदने का संदेह है। जांच में और अभिभावकों, छात्रों, बिचौलियों के नाम सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि ड्रोन से पेट्रोलिंग के जरिए बिजली लाइन ट्रिपिंग 35% कम हुई है। वहीं समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं के 473 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं और 40 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बालाघाट के सांदीपनी विद्यालय वारासिवनी के 12वीं के छात्र मयंक मात्रे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंक एक हासिल की है। 15 मई को जूम पर हुए लाइव फाइनल में मयंक ने 155 अंक लेकर ग्रैंड विनर का खिताब जीता। इस जीत के साथ उनका चयन सितंबर 2026 में होने वाले नासा एजुकेशन टूर के लिए हुआ है। इस दौरान वे कैनेडी स्पेस सेंटर समेत कई शैक्षणिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार $40,000 यानी करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत हर साल 20 छात्रों का चयन होता है। इस योजना में आवेदन के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में एक खास संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। वहीं कल इंदौर केंद्र के 71वें स्थापना दिवस पर मालवा हाउस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में राज्यव्यापी गिद्ध गणना कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 8,748 स्थानों पर गणना हुई, जिसमें 8,810 गिद्ध मिले। ये गणना 24 मई तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक चलेगी। इस बार ऑनलाइन ऐप के जरिए गणना हो रही है, जिसमें वन कर्मचारियों के साथ पक्षी विशेषज्ञ, छात्र और स्थानीय नागरिक भी शामिल है। प्रदेश में मछली पालन उत्पादन बढ़ाने को लेकर कल भोपाल में हितधारक सम्मेलन हुआ। निवेशकों ने 2 लाख केस लगाने के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य पहले साल सिर्फ 10,000 केस का था। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केस कल्चर के आवेदन की कोई समय सीमा न रखी जाए। सरकार कोल्ड चेन, हैचरी और फिश फील्ड के लिए सब्सिडी देगी। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। नौगांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, वहां पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में लू का रेड अलर्ट है। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आपको समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में 25 मई को विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के ग्राम मामाडोह में कल हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के बाद जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मामाडोह पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आगरमालवा जिले के लिए प्रेक्षक कृष्णमोहन गौतम ने कल जिले सहित बड़ौद के विभिन्न वार्डों के मतदान केंद्रों के साथ ही जिले के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। मंडला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। झाबुआ कलेक्टर ने ग्राम समोई में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल कलेक्टर ने कल खोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक लेकर विभिन्न गांवों में नियुक्त जिला अधिकारियों से ग्रामीण समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। सुबह की लालिमा हो या संध्या की बेला, सुबह की लालिमा हो या संध्या की बेला, संगीत की स्वर लहरियों का लगता है मेला। नाद ब्रह्म सुरताल का कमाल है, नाद ब्रह्म सुरताल का कमाल है, वाणियों में श्रेष्ठ आकाशवाणी का 90वां साल है।

नूर जहां की आवाज़ में अनमोल घड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तनवीर नकवी ने इसे लिखा था, नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, कल ही हमने आकाशवाणी इंदौर की 71वीं वर्षगांठ उत्साह उमंग के साथ बड़ी धूमधाम से मनाई। आकाशवाणी इंदौर के स्वर्णिम इतिहास में पहली बार ऐसा अनूठा कार्यक्रम हमें देखने को मिला, जिसमें आकाशवाणी के सभी कलाकारों ने अपना अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और उत्सव के इस बेला को अविस्मरणीय बना दिया। कल के उत्सव को याद करते हुए इस सुहानी सुबह को और अधिक सुहावना बनाते हैं इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है बेकसूर फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है आरजू नकवी ने, संगीत अनिल बिस्वास का।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर के ये 70 साल बेबी साल रहे। इन 70 वर्षों में हमने कई सारे इतिहास रचे हैं इस रेडियो के माध्यम से। आप सभी सुधी श्रोताओं का हमें जीवन भर का साथ मिला है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और यही चाहते हैं आपका ये साथ यूं ही बना रहे सदा।

लता मंगेशकर की आवाज में हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत था। श्रोताओ, यूं भी रेडियो हमारे जीवन में सुख दुख का साथी है। न जाने कितने सारे उभरते कलाकारों को आकाशवाणी के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है। रेडियो है हमारे आन बान शान और अभिमान। आकाशवाणी ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले गुणीजनों को सम्मानित भी किया और उनके भविष्य को संवारा है और उन्हें पंख दिए उड़ने को, जिससे वे अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला सकें।

लता मंगेशकर की आवाज में सहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, रामलाल का संगीत था। श्रोताओं, समय बदला ऋतु बदली ना बदला आकाशवाणी का सुरीला सफर। रेडियो के इस सफरनामे को कई पीढ़ियों ने जिया है। आकाशवाणी में प्रसारित होने वाले कई कार्यक्रमों में फेरबदल हुए, लेकिन सदाबहार फिल्म संगीत न बदला और न कभी बदलेगा। आपके फरमाइशी गीत सदा आपको हम सुनवाते रहेंगे आपके अनुरोध पर।

किशोर कुमार की आवाज़ में अनुरोध फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओं, संगीत के सात सुरों से हमारा मन प्रफुल्लित होता है और आकाशवाणी ही एक ऐसा सुरीला माध्यम है जिससे हम इस तरह का सुरीला संगीत सुन सकते हैं, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो या हो लोक संगीत। माध्यम एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी।

0: इंदिवर का लिखा गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम था सहेली।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

गीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों को पहले हम रेडियो सेट पर सुना करते थे, फिर आए ट्रांजिस्टर और अब हम ऐप पर और अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है।

गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, रामलाल का संगीत था। कार्यक्रम के आखिर में आकाशवाणी के 90 साल और आकाशवाणी इंदौर के 71वें साल की आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से बधाई देते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और सुरीला गीत। फिल्म का नाम है पूर्णिमा, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़, गीत लिखा है गुलजार ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

आज के इस सुरीले गीतों के सफर को देते हैं यही विराम और लेते हैं आपसे विदा। सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया।

0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है।

0: वृद्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

श्रोताओं, भारत की इस पवित्र भूमि पर सैकड़ों नदियां हैं जिनका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। कहते हैं इनमें स्नान, ध्यान और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये नदियां होती है हमारे क्षेत्र की जीवन रेखा, जो करोड़ों प्यासों को देती है जल और उपजाऊ भूमि। जिन पर फसलें उगाकर किसान करते हैं पूरी सृष्टि का

भरण पोषण। हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है ये नदियाँ। कई सारे तीर्थ स्थल भी इन नदी किनारों पर बसे हैं, जहाँ महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं। ये नदियाँ हमारे आस्था का केंद्र तो हैं ही, साथ ही ये हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। ये नदियाँ न होती तो हमारी प्यास कौन बुझाता, हमारे खेतों को कौन सींचता? क्या बिना नदियों के इस धरती पर जीवन और हरियाली की कल्पना की जा सकती है?

और अब बात करते हैं उस पवित्र नदी की जो बहती है हमारे मालवा निमाड़ क्षेत्र में, जो अमरकंटक से निकलकर जा मिलती है अरब सागर में, और जो न जाने कितने जीवों का घर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवनदायिनी माँ नर्मदा की, जिसका कल कल बहता जल जाने कितने लोगों का आस्था का केंद्र है, और इसकी परिक्रमा कर लोग अपना जीवन सफल करते हैं। नर्मदे हर का उद्घोष कर श्रद्धालु इनकी परिक्रमा पैदल चलकर 3 वर्ष 13 महीने और 3 दिनों में

पूरी करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। ये हमारी जीवन धारा है जो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर देती हैं।

ये तो हुई कुछ प्रमुख नदियों की बात, और अब बात करते हैं पीने के पानी के स्रोतों की। तो हमें पीने का पानी मिलता है नदियों, झीलों, तालाबों, कुएं, हैंडपंप और नलकूपों से। अभी तेज़ गर्मी पड़ रही है और हम पीने के पानी की अत्यंत कमी महसूस कर रहे हैं। शहरों में तो पीने का पानी फिर भी मिल रहा है, लेकिन गांवों की स्थिति थोड़ी ख़राब है। वहाँ की ज़मीन का पानी गर्मी के कारण सूख जाता है और उन्हें भरी गर्मी में पानी लेने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है, जिससे कई इलाकों में सूखा पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पर्यावरण के असंतुलन से पीने के पानी की कमी महसूस हो रही है। बारिश के पानी को सहेजना, संचित करना बहुत आवश्यक है। पानी का अपव्यय ही इस समस्या से हमें बचा सकता है। क्या हम पानी का उपयोग कुछ हद तक कम कर सकते हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिए, ताकि पानी की हर एक बूंद किसी के काम आ सके। और अब आपको सुनवा रहे हैं आदमी और इंसान फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने। रवि का संगीत है, गायक कलाकार आशा भोसले, महेंद्र कपूर। और इस गीत में पर्वत से बहते झरने का बहुत ही सुंदर दृश्य है। आइए सुनते हैं वही गीत।

और अब बात करते हैं नदी, तालाब, झील या किसी पानी के किनारे जाने या उसमें उतरने से पैदा हुए खतरों की। नदी या तालाब के किनारे कीचड़, काई या फिसलन भरी चट्टानें हो सकती हैं, जिस पर असावधानी से गुजरने पर हमारा पैर फिसल सकता है और हमें चोट भी लग सकती है। ये नदियाँ ऊपर से बड़ी शांत दिखती हैं, लेकिन भीतर के पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो संभल कर नदी में प्रवेश करें, नहीं तो आप पानी में बह सकते हैं। पानी में जहरीले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो सावधानी रखें। कभी कभी नदियों का पानी ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, जिससे शरीर में झटके भी लग सकते हैं। तो संभल कर उतरे पानी में। और अब आपको सुनवाते हैं मुझे जीने दो फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने। इस गीत में नदी में न जाने की बात कही गई है। आइए सुनते हैं वही गीत।

0: दुनिया पर नदी नारे न जाओ शाम।
1: मुझे जीने दो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, जयदेव का संगीत था। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आज आपने सुने पानी के इर्द गिर्द फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीत। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दे पद्मश्री को, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं ललतू मालाकार और साथी के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। कलाकार हैं ललतू मालाकार और साथी।

0: लोक संगीत में आप सुन रहे थे ललतू मालाकार और साथी के गाए निमाड़ी लोकगीत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा का 30वां एपिसोड, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है।

0: में आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा, जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
1: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
0: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
1: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद। तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं, तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
0: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
1: डर,
0: हाँ, मन में डर जो होता है,
1: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला,
0: क्या बात है।
1: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ, हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
0: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से,
1: बिल्कुल सहज रूप,
0: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
1: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
0: जी जी,
1: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
0: अच्छा।
1: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
0: जी।
1: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर हो जाती भी थी और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो और उम्र कम थी ना तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
0: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है जो आपके वादन की विशेषता है ये सोच कहाँ से आई इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जितने भी वाद्य थे वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
0: अच्छा
1: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
0: जी।
1: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी तो मेरे मन में आया ये विचार मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा उन्होंने कहा तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे तो इस तरह शुरू हो गया।
0: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
1: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से संगीत साधक से संगीत सीखने के हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई कितना आनंद हुआ और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
0: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
1: नहीं बनारस घराने की बात नहीं उठती है
0: जी।
1: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
0: हाँ जी।
1: मैंने गुरुजी एक राग मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं मैं तुरंत बजा तो लेती थी पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
0: जी जी
1: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा मेहनत करनी पड़ी इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
0: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
1: नहीं खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं किसी कारण से एक दिन नहीं ऐसा होता नहीं था हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
0: जी जी।
1: कि आज कुछ मिस किया मैंने ऐसी भावना आती थी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
0: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सवाल ऐसा है
1: हम सभी लोग बजाते हैं यानी हम रहे 5 बच्चे।
0: अच्छा।
1: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है चाहे लड़की हो या लड़का पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो तब से शुरू हो जाता है तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
0: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का छुहालका फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
1: नहीं मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
0: जी, जी।
1: तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे उनका स्थान इतना था।
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में? अच्छा, मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की

0: सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी. इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
1: अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है. तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं. आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी. तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का. बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे.
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी. आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई.
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया.
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की. तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता.
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी.
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मुझसे काफी सीनियर थे तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो.
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी. अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है.
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है.
0: हुँ?
1: कुछ नया क्रिएशन.
0: तो
1: आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है.
1: जी, जी.
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है. पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की. जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है. तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया.
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है बीएचयू में. तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं. हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में.
1: जी बिल्कुल.
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर.
1: हाँ जी.
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे. तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा. तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को. तो पूछा इतने में करोगी तुम? मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में? नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत ही ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहाँ वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बचाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे ये हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का? तो लोग कहा कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं विनायक तोरवी का गाया राग रामकली। तबले पर आपके साथ है रविंद्र यावगल।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे विनायक तोरवी का गाया राग रामकली। तबले पर आपके साथ थे रविंद्र यावगल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: गोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख है अनिल जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। बात सबसे पहले मौसम की। नौतपा शुरू होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही दमोह जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2022 में इतना तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण गर्मी के बीच जिले में जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे हृदयपुर, इमलाई, आमचोपड़ा, बरमासा, सिंहपुर, खजूरी समेत दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन से यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना किया गया। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वातानुकूलित ट्रेन से जिले के 263 यात्री माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला जेल पहुंचकर नवनिर्मित डबल स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया। करीब 1,18,00,000 रूपये की लागत से तैयार इस बैरक का उद्घाटन कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिले में वृद्धावस्था, पेंशन से वंचित बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सेवा और आशीर्वाद अभियान शुरू किया है। जिले में 1664 ऐसे पात्र प्रतिजन चिन्हित किए गए हैं जिनकी समग्र ईकेवाईसी लंबित होने के कारण पिछले 8-9 माह से पेंशन बंद है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां वृद्धजनों के निशुल्क ई केवाईसी कर पेंशन शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरी ओर दमोह नगर के खजरी मोहल्ला निवासी समीर अहिरवार अपनी अनोखी खोज किसान मित्र छड़ी को लेकर चर्चा में हैं। ये छड़ी मिट्टी परीक्षण के साथ साथ कंपन पैदा कर किसानों को सर्प दंश से बचाने में भी मदद करती है, जिससे करीब 3 मीटर दूर तक सांप भाप जाते हैं। समीर के इस खोज का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वहीं उन्हें स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट भी मिली है। अब वे पराली से पेपर, पेन और पेंसिल बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती के दौर में ग्राम बांसा कला के सीमांत किसान परसादी पटेल ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल पेश की है। 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन में वे घर पर तैयार केचुआ खाद से गेहूं, उड़द, चना, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। सांसद राहुल सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किनबेतवा लिंक परियोजना, मेडिकल कॉलेज, सड़क और पुल निर्माण सहित किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन के तहत जिले में पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब तक जिले में 97 पांडुलिपियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 63 पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड भी किया जा चुका है। खेल जगत से अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में 10 से 12 मई तक अशोकनगर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दमोह जिले की बालिका टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जिले में उत्साह देखने को मिला है। श्री दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर और श्री दिगम्बर जैन पंचायत तथा स्थानीय केन्द्रों के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के 3 केन्द्रों पर हुआ। इसमें 500 ज्यादा शिविरार्थियों ने भाग लिया। शिविर में 22 कक्षाएं संचालित की गई हैं, जिनमें संस्कार, स्वाध्याय, पूजा, संगीत, व्यक्तित्व विकास और जैन संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दमोह जनपद के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पिछले दिनों 35 ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 8 वर्ष के बालकों से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार आचार्य पंडित द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपको फोन नंबर बता देते हैं। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमें फोन करिए और हमसे जुड़िए। लेते हैं पहला फोन कॉल। हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार पद्मा जी।
1: नमस्कार। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं अनिल भंडारे सुजामनगर से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
3: भाई आप कैसे हैं? बढ़िया, कार्यक्रम सुनते रहते हैं आपका, भाई अच्छा लगता है कार्यक्रम।
1: हाँ हाँ, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
3: आज हम सीमा फिल्म की पुरानी।
1: जी हाँ,
3: नूतन संग जयकर सर मुजिकता शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत था। लता मंगेशकर ने बहुत सुंदर लिखी आवाज में गाया है। बात बात में रूठो ना, अपने आप पे रूठ ना, न रंग बदलती दुनिया है इसमें रूठो।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। हाँ, गीत भी बहुत अच्छा है।
3: बहुत प्यारा लता का गाना है, फेमस हुआ था
1: शुभा खोटे। हाँ, और भी बहुत सारे कलाकार थे इसमें।
3: हाँ,
1: बलरा सानी। हाँ हाँ,
3: मुख्य कलाकार दोनों थे। पिक्चर बहुत बढ़िया थी। बलरा सानी का काम, नूतन का काम बहुत देखने लायक था। पिक्चर बहुत चली थी उस जमाने में। ये पिक्चर एक थिएटर में 25 लाख गई थी।
1: ओहो,
3: पूरे पूरे रिकॉर्ड में पूरे मतलब हर जगह अपना अपना रिकॉर्ड कायम किया। और गाना ने बहुत, इसमें एक गाना वो था सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, याद होगा आप?
1: हाँ हाँ,
3: ये गाना
1: बहुत नहीं, नहीं, सारे गीत बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के, बहुत अच्छे।
3: तू कहाँ जा रहा है जाने वाले, क्या तू प्यार का सागर, बहुत गाना इसमें थे।
1: जी जी,
3: बहुत अच्छा रोल था भला चाहने का रोल भी। लेकिन का रोल तो बेहतरीन था
1: जी।
3: उसको नामांकन भी गया था इस कार्य गाने इस कार्यक्रम के।
1: जी जी, और एक शास्त्रीय राग पर भी गाना बहुत अच्छा है।
3: मनमोहना
1: बड़े झूठे। हाँ,
3: बहुत प्यारा गाना, वो भी गाना अच्छा था। मनमोहना बड़े झूठे राग पे बहुत सुंदर गाना गाती है। सभी गाने
1: चलिए
3: अधिकतर रखी और कोई था मन्ना, एक मन्ना लेके गाना भी था उसमें।
1: हाँ, कुल मिला के 6-7 गाने हैं इस फिल्म में और सारे गाने बहुत अच्छे हैं।
3: हाँ, इसमें लगता है गाना ज्यादा अच्छे, बाकी तो रफी और मन्ना दे के एक दो दो गाने थे, लेकिन गाना अच्छे थे इसमें। पिक्चर भी बहुत सुपर थी, कहानी भी बहुत बढ़िया थी। जयकिशन का मुझे तो क्या कहना, और शैलेंद्र का गीत करते बाबर बाप, ये गाना भी शैलेंद्र का लिखा हुआ था। और वो मनमोहना बड़े झूठे, वो भी गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ था।
1: जी जी जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक तरह से सुजाता फिल्म की पूरी जानकारी हमें मिल गई आपके आपसे। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। और अब सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए।
3: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: काश कहीं खुशियों की दुकान होती, सारी खुशियां खरीद लेते आपके लिए, चाहे कीमत इसकी हमारी जान होती।
0: हो, क्या बात है। हसीना भी मंसूरी बोल रही है ना।
1: जी, हसीना भी मंसूरी बोल रही, सालदाना का इंदौर से। कैसे
0: हाँ,
1: हैं पद्मश्री आप?
0: बहुत अच्छे हैं हम भी। आप बताएं,
1: ये
0: आप
1: खैर
0: कैसे
1: रहना
0: हैं?
1: चाहिए। हम भी ठीक है।
0: हाँ, काफी दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
1: जी जी
0: एक आध
1: जी

0: हो चुका है। हाँ हाँ
1: हाँ हाँ जी।
0: और आज क्या खास दिन है?
1: खास तो कुछ भी नहीं, मतलब सैटरडे तो छुट्टी है आज तो।
0: छुट्टी है हाँ, गर्मी गर्मी का मौसम चल रहा है तो दिन भर
1: गर्मी में तो हाल बेहाल सभी का कर रखा
0: है, सभी का कर रखा है। तो दिन दिन भर आप जैसे आज छुट्टी है, आप घर में रहते हैं तो क्या कुछ ऐसा कुछ पीने के लिए कुछ ऐसा ठंडा क्या बना के रखते हैं आप?
1: पीने के लिए ठंडा तो नहीं, कुछ भी नहीं बनाते, बस ये है कि फ्रिज के पानी से बचते हैं और उबला हुआ पानी पीते हैं, उसको ठंडा करके एकदम बर्फ जैसे ही हो जाता है ठंडा, और कूलर के सामने रख देते हैं, बिल्कुल कूलर एकदम एकदम कूल पानी हो जाता है, वो पीते हैं मैडम, और घर से बाहर कहीं नहीं निकलते, और ठंडा ही रहता, मतलब
0: ठंडा ही रहता है।
1: और घर पर ज्यादा ही ठंडक पहुंच गई थी। आकाशवाणी के जरिए बहुत ज्यादा ठंडक हो रही,
0: बहुत अच्छा प्रोग्राम। हाँ
1: कभी नहीं मिली हम लोगों को।
0: हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं बहुत अच्छा, हमने भी वो कार्यक्रम घर पर सुना और फेसबुक पर भी आ रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी उसकी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत मजा आया हमको भी।
1: निमी मिश्रा जी आई थी, वो भी बहुत अच्छा लगा, तो वो भी हमारे मुंबई में बहुत कर लेते थे
0: जी।
1: हेलो सहेली
0: जी जी, अच्छा बताए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है देखा प्यार तुम्हारा, और गाने के बोल है उम्र तेरे नाम नाम कर दी, दे या दे खुशी तेरी मर्जी हो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा गीत है, काफी दिनों बाद सुन रहे हैं ये वाला गीत।
1: हाँ ये बहुत सालों से
0: बहुत,
1: चला
0: बहुत सालों से चला नहीं है। हाँ सही है, क्या होता है कि
1: सुनते रहते तो सीढ़ी पड़े पड़े कोई खराब नहीं हो जाए, थोड़ी जैसे मध्य मध्य आवाज में रहती, दबी दबी आवाज नहीं रहता, और जैसे गाने सुनते रहते जो खुली आवाज में रहती।
0: जी जी जी सही है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, है ना
1: जी। शुक्रिया
0: शुक्रिया।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन,
1: हेलो जी, नमस्ते। इमेज हॉटलाइन
0: एमएच हॉटलाइन, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। दीदी, आपका निमिष पता, मैं महेश जिलाला बात कर रहा हूँ, जिला आगरमाल व ग्राम मनासाती।
0: जी, नमस्कार आपको। अच्छा, गीत बता दे, कौन सा सुनेंगे?
1: दीदी, आज गीत हो जाए बद्री की दुल्हनिया का।
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये गीत।
1: जी
0: और
1: दीदी, वो
0: कैसे हैं
1: इंदौर
0: आप?
1: का। जी दीदी, हम बढ़िया है। इंदौर का मौसम कैसा है?
0: इंदौर में तो बहुत गर्मी है, और आपके उधर भी होगी गर्मी, तो इन दिनों सभी जगह है।
1: हाँ दीदी, गर्मी तो इन दिनों सभी

0: जगह है, हमारे इधर भी बहुत छैलिस में है, उसको पार कर जाती है कभी कभी तो।
1: जी, क्या करते हैं, गर्मी में बाहर तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गर्मी में।
0: दोपहर को दीदी क्या है कि वो वहां पर रहते हैं और कहीं ये झोपड़ी झोंपड़ी बना रखी है, उसमें रहते हैं दीदी हम।
1: जी, अब घर में कौन कौन है आपके?
0: दीदी घर में सभी है, पूरे समस्त परिवार है
1: समस्त परिवार है, सभी सुनते हैं रेडियो आकाशवाणी
0: दीदी।
1: इंदौर।
0: रेडियो चलता रहता है और अपने पास मोबाइल ऐप चलता रहता है और घर वाले के पास रेडियो चलता रहता
1: अच्छा, यानी ऐप पर भी सुनते हैं और रेडियो पर भी सुनते हैं, दोनों तरीके से
0: है।
1: सुनते हैं
0: वो
1: आप।
0: ऐसा होता है कि कभी कभी रेडियो पर ऑन हो जाते हैं कार्यक्रम, ऐप पर तो पूरा क्लियर सुनाई देता है।
1: जी सही है।
0: और दीदी ऐप्स के माध्यम से ऐसा है कि अपन कहीं भी हर जगह भी सुन सकते हैं, किसी भी जगह।
1: जी, चलिए अच्छा लगा आपसे बात हुई, है ना। सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत,
0: जी जी
1: सुनिए।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा।
0: गंज बासोदा से? जी जी
1: बिल्कुल,
0: जी जी
1: पानीपुरी सेंटर।
0: जी आपसे तो एक बार पानी पूरी के पानी की रेसिपी भी ले चुके हैं और घर पे बना भी चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, डेली बनाते हैं दीदी, बिल्कुल
0: हाँ
1: डेली।
0: नहीं, हम बना चुके हैं। आपसे एक बार रेसिपी ली थी हमने, कैसे बनाते हैं
1: अच्छा
0: आप?
1: बनाया
0: बिल्कुल बनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बनी। और आपने एक बहुत मज़ेदार बात उसमें ये कही थी कि
1: बिल्कुल।
0: एसेंस एसेंस डला हुआ नहीं होता है, हमारे पास जो है वो ओरिजिनल है सारा।
1: नहीं
0: तो
1: नहीं यह सिर्फ
0: घर
1: नहीं
0: में,
1: डालने चाहिए, क्या है
0: हाँ
1: नुकसान देख
0: हाँ
1: चुके।
0: घर घर में वैसे भी सारे घर के मसालों से ही बनता है, तो ऐसा समझ
1: हाँ
0: सकते
1: बिल्कुल
0: हैं कि आपके पानी में जो स्वाद होगा वही हमारे में
1: बिल्कुल
0: आया होगा। जब तक आप चखेंगे
1: बिल्कुल,
0: नहीं
1: क्यों नहीं
0: तब
1: आया
0: तक
1: होगा
0: समझ में नहीं
1: बिल्कुल।
0: आएगा।
1: नहीं सही
0: जी
1: बात है, सही बात।
0: हाँ,
1: और मौसम कैसा है दीदी इंदौर में अभी
0: इंदौर
1: फिलहाल?
0: में तो बहुत गर्मी है
1: बहुत
0: और
1: ज्यादा, गंजबासोदा में बहुत गर्मी है, बहुत
0: हाँ
1: जोरों पे गर्मी चल रही है।
0: इस समय सभी जगह बहुत गर्मी है।
1: हाँ।
0: सुनते
1: और
0: हैं कि
1: आपसे
0: शायद
1: कम
0: अभी,
1: नियमित श्रोता है दीदी।
0: हाँ बिल्कुल नियमित श्रोता हैं आप, आपके पत्र भी हमें मिलते हैं और आप, आपकी
1: हाँ
0: फरमाइश के गीत भी हम सुनवाते हैं आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सभी आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े हैं,
0: जी।
1: लखनऊ है, ये सभी आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े रहते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको कितना अच्छा
1: और
0: मौका है आपके लिए कि आप इतने सारे उद्घोषकों से आप लाइव जुड़ते हैं और बात करते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल दीदी, और दीदी हम और एक बात और कहना चाहते हैं
0: जी
1: कि आजकल जो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, वे लावारिस ना घूमे, पढ़ाई लिखाई करें, फिर भी जो छुट्टी होने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल बहुत से बहुत कम करें,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: उन
0: आपके,
1: बच्चों पे ध्यान बिल्कुल दिया जाए कि ये बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं,
0: जी।
1: बिल्कुल देना चाहिए। क्या है, माता पिता का ये फर्ज बनता है कि भाई देखें बच्चे क्या चीज देख रहे हैं इसमें।
0: जी बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आप जो बात कर रहे हैं बहुत सारे श्रोता सुन भी रहे हैं और श्रोताओं,
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हम तो ये
0: उनको बहुत
1: कहना
0: अच्छी
1: चाहते
0: जानकारी
1: हैं।
0: मिलेगी ये बात, वो भी जान जाएंगे कि हमें क्या करना है।
1: और फिर को दीदी और ये कहना चाहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें,
0: जी, बिल्कुल।
1: पनी पना वगैरह बनाए, कैरी का पना पिए, जूस वगैरह पिए, ऐसे फल फलूट वगैरह खाए, हल्का फुल्का खाना भी खाए,
0: जी।
1: और पानी की मात्रा बिल्कुल बढ़ा के रखें,
0: जी पानी पीते रहें
1: मेन चीज है।
0: क्योंकि
1: पानी
0: पसीना
1: तो
0: आता है और शरीर का
1: तीन
0: पानी
1: लीटर
0: उड़
1: पानी
0: जाता है।
1: पर्याप्त होना चाहिए शरीर के अंदर,
0: जी
1: बिल्कुल बना के रखें पानी का पहले।
0: जी जी जी जी बहुत अच्छी जानकारी भी दी आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, है ना?
1: बिल्कुल
0: सुनवा
1: दीदी,
0: देते हैं आपकी पसंद का गीत, है
1: ठीक है
0: ना?
1: दीदी, नमस्ते।
0: कौन सा गीत पसंद किया था आपने? राजा हिंदुस्तानी,
1: हमने राजा हिंदुस्तानी,
0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, कौन सा गीत?
1: वो हम दीदी ध्यान नहीं आ रहा गाने के
0: ध्यान
1: बिना, आप
0: नहीं आ
1: बता दें
0: रहा।
1: जरा।
0: चलिए, सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के, हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का, इस फिल्म का गीत, है ना?
1: बिल्कुल
0: सुनिए रेडियो सेट पर।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन, आदरणीय दीदी सारा सुप्रीम सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। आप काफी शायराना अंदाज में बोलते हैं आप
1: जी। धन्यवाद दीदी। मैं वही आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा की मथुरा उत्तर प्रदेश की आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ एमएच हॉटलाइन इंदौर से।
0: जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है डॉन, पुरानी वाली।
0: पुरानी वाली।
1: और इसमें किशोर साहब ने आवाज दी है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन डॉन डॉन।
0: ओहो हो, हो। अच्छा अब गाना भी गा लेते हैं आप? बढ़िया गाना गा लेते हैं।
1: उनका गुनगुना लेता हूँ कभी कभी आप लोगों के साथ में, अच्छा लगता है जब भी वार्तालाप होती है हमें शॉर्ट लाइन पे, बहुत ही खुशी प्रसन्नता हो जाती है। फोन भी बड़ी मुश्किल से लगता है दौर में।
0: जी जी जी जी, आज तो फोन लग गया आपका, बड़ी मुश्किल से लगता है, ये तो कहा सच आपने।
1: जी जी, क्या है कि इस वक्त हमारे मथुरा में गर्मी हो रही है, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म गर्म हवाएं हैं, पूरा क्षेत्र लू की चपेट में है।
0: जी और क्या करते हैं गर्मी में, गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: गर्मी के वातावरण में हम घर के अंदर रहते हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है आप लोगों से वार्तालाप करके अत्यंत खुशी और प्रसन्नता अनुभूत करते हैं। और घर के अंदर रहते हुए जो सुकून महसूस करता हूँ बच्चों के साथ में रहते हुए, वो अद्वितीय है। बाहर निकलना एक जोखिम का काम है, लू लगने का और लू की चपेट में आने का खतरा रहता है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए।
1: जी हृदय से धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको,
1: मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कैसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो
2: नमस्कार। हेलो नमस्कार सर जी। सर जी नमस्कार।
1: हेलो
2: नमस्कार सर जी।
1: हेलो
2: सर जी नमस्कार।
1: हेलो हेलो।
3: अरे मैडम फोन क्यों बंद कर दिया आपने?
1: हेलो एम एच हॉटलाइन।
3: एम एच हॉटलाइन अनिल कौशल इंदौर से बात कर रहे हैं।
1: हेलो
3: हाँ अनिल कौशल इंदौर से।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: हेलो,
1: अनिल
0: एम एच
1: बामनिया लाबले
0: हॉटलाइन।
1: वेरू से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बामनिया बोल रहा हूँ, लाबले वेरू से मैडम। पन का गीत सुनना चाहता हूँ, मेरा
0: हेलो,
1: मन यूं ही चाहे। हेलो, आवाज नहीं मिल रही आपकी। फिल्म मन का गीत सुना दीजिए मुझे आप।
0: हाँ एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, हाँ एम एच हॉटलाइन। हेलो,

0: हेलो हेलो
1: जी
0: हेलो,
1: जय श्री महाकाल,
0: एम एच
1: जय श्री
0: हॉटलाइन।
1: महाकाल। हेलो हेलो मैम, हेलो। हाँ
0: हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: हेलो, एम
1: हेलो
0: एच हॉटलाइन।
1: जी मैम, नमस्कार। हेलो,
2: आप जिस व्यक्ति से बात,
0: हेलो।
1: हाँ मैम, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे
1: मैम जय श्री महाकाल मैम, मैं शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ
0: हैं?
1: मैम।
0: विदिशा से बात कर रहे हैं।
1: जी मैम,
0: हाँ, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम मूवी का नाम है तेरे नाम,
0: जी
1: और गाने के बोल हैं तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल,
1: जी
0: सुनवाएंगे
1: मैम,
0: आपको ये
1: जी
0: गीत। और कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, और आप से बात करके और भी बढ़िया हो गया।
0: अच्छा, क्या करते
1: जी
0: हैं?
1: मैम, मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके कार्यक्रम सुनता रहता हूँ।
0: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हो रही है ना। सुनवा देते हैं आपकी
1: मैम
0: पसंद का गीत, तेरे नाम
1: मैम
0: फिल्म
1: कुछ
0: का।
1: दोस्तों को याद करना था मैम।
0: जी, बिल्कुल कर लीजिए याद।
1: हमारे मित्र हैं पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, और अविनाश जी, और राकेश जी, और भगवान सिंह परमार जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशल
0: जी, सभी श्रोताओं के साथ, आपके सभी दोस्तों के साथ आपकी पसंद का आपको गीत सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम तेरे नाम। सुनिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। मैडम जी कैसी हैं आप?
0: बढ़िया हैं हम, आप कैसे हैं आप बताएं?
1: मैं भी अच्छा हूँ, गर्मी का मजा ले रहा, 44 डिग्री पहुँचता है।
0: जी जी जी, कौन सा गीत सुनेंगे? गीत बता दें।
1: फिल्म प्रेम कहानी का, मुकेश और लता जी की आवाज, आनंद बस के गीत, मिट्टी काल फेरेला, फूल आहिस्ता फेंको फूल बड़ी।
0: जी जी जी, आप आकाशवाणी कितने सालों से सुन रहे हैं?
1: मैं 75 से सुन रहा मैडम, अब रिटायर।
0: हाँ, जो आपने कहा ना, इस फिल्म का गीत, ये गायक कलाकार, ये गीतकार, ये संगीतकार, इतना नॉलेज रखने वाले, मतलब समझ सकते हैं कि आप बहुत
1: जी
0: सुनते हैं आकाशवाणी और गीतों को सुनते हैं। फिल्में भी देखते हैं क्या?
1: फिल्में बस मोबाइल पे देखे थे, अब तो नहीं देखते।
0: अच्छा, अब नहीं, मतलब थिएटर में नहीं देखते, मोबाइल वगैरह पे देखते?
1: नहीं देखे था, सब मोबाइलों पे
0: देखे। नहीं, पुरानी फिल्में ही होती ऐसी थी कि जो मतलब देखने में भी अच्छी लगती थी। अभी आजकल की फिल्में तो
1: गाने अच्छे होने के कारण सभी पिक्चरें देखी।
0: जी, चलिए, काफी दिनों बाद आपका फोन लगा, ऐसा आप कह रहे हैं?
1: लगता ही नहीं है।
0: चलिए, आज
1: लग गया,
0: आज आपका फोन लग गया, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात हो हुई, बहुत अच्छा लगा। चलिए, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत प्रेम कहानी फिल्म से, सुनिए। नमस्कार।
2: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

0: हेलो हेलो।
1: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
0: हाँ, एम एच हॉटलाइन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: मुख्यालय गुमास्ता नगर, टीम नंबर 71, इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: जी जी जी जी कौचाले जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात हो रही है।
1: जी, और आज का
0: जी
1: बैंक
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: चौथा शनिवार है तो बैंक की छुट्टी है, इसलिए घर पर ही है और फोन
0: जी
1: लगाने के लिए टक मिल गया।
0: जी जी जी जी कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आज हमको मधुमती फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, लता मंगेशकर साथियों की आवाजों में,
0: जी
1: रुल्मी संग आखले।
0: जी जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये गीत, जरूर सुनवाएंगे। और इन दिनों क्या चल रहा है?
1: अभी तो आपको मालूम है भीषण गर्मी पड़ रही है क्या,
0: जी
1: और बैंक में काम करते हैं तो बैंक का काम बाहर का भी रहता है,
0: जी
1: तो काम से थोड़ा बहुत तो बाहर जाना ही पड़ता है,
0: जी
1: तो मौसम अपना काम करता है तो अपने को भी तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना, चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी हो सर्दी हो।
0: हाँ।
1: मौसम के डर से अपन घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा कि नहीं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: मौसम अपना काम करता है तो हमको भी अपना काम करना चाहिए, मौसम की परवाह अपने को नहीं करना चाहिए, बस अपने शरीर का थोड़ा बहुत बचाव करना चाहिए।
0: जी जी जी बहुत अच्छी बात कही आपने, मौसम से बचे रहें और अपने अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, है ना? जी जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म मधुमति से। जी नमस्कार।

0: तो ये था आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए पद्मश्री तपस्वी को। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसकी शुरुआत बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौटकर बचपन के जमाने नहीं आते। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: एक मैं जो है शायरी बोलना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश देश की दिल की धड़कन, जो दिल को छू जाता है और आपके हर कार्यक्रम मन में रच बस जाता है, तभी तो दीदी जी हर श्रोता पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता है, उसके बाद आपके चैनल में इंटर कर जाता है।
1: वाह, क्या बात है। अब हमारी बात किन से हो रही है वो बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
2: चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी जी को चित्रकूट से सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
1: नमस्ते दिनकर साहब जी।
2: दीदी जी का परिचय भी जानना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
2: जी। बहुत दिनों के बाद आकांक्षा जी आपसे जो है बात हो रही है, इसके लिए धन्यवाद, आपने हमारा फोन रिसीव किया। और मैं जानकारी चाहता हूँ किस चैप्टर पे आज बात होगी।
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज हम आपको ले चलेंगे यादों के झरोखों से झांकने के लिए, जहाँ आपने बचपन के वो दिन गुजारे हैं खेल कूद के साथ।
2: जी जी जी जी जी, बचपन में तो एक था हम लोगों के जो पूर्वज थे किसान थे, और किसानी में मैं एक दिन याद कर रहा था कि एक जमाना था कि हम बैल गाड़ी में जो है मेला देखने जाया करते थे
1: जी।
2: चार चार पांच पांच बच्चे बैठ के जो है हमारे पूर्वज हमारे दादाजी हमारे पिताजी लेके जाया करते थे, और कहीं भी हम रिश्तेदारी में 30 से 40 किलोमीटर, और एक जो एक सरपट दौड़ होती है दीदी जी
1: जी,
2: बैलगाड़ी की सरपट, एक एक घंटे में 12 से 13 किलोमीटर वो सरपट दौड़ में हमारे बैल जाते थे।
1: बहुत बढ़िया।
2: और हम लोग 40 से 42 किलोमीटर हमारा एक रिश्तेदारी वहाँ हम 3 घंटे में पहुंच जाते थे
1: जी। हम जानना चाहते हैं आपने उस दौर में खेल कौन से खेले हैं दिनकर जी।
2: उस दौर में हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड से जो है एक सुर्रा होता था, और एक होता है गिल्ली डंडा होता था, जो है पेड़ में चढ़ के उतर के भी जो है ये खेल खेलते थे, और एक खेल होता था जो है आपका ये छुपा छुपी का खेल भी होता था बचपन में।
1: जी जी,
2: तो इसको भी खेला। और मैं क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा दीदी जी, जब वयस्क हुआ तो क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा, साइनिंग क्लब जो है बहेरी के नाम से जो है, और इससे मैं जुड़ा रहा। लेकिन बचपन के खेल मैंने बताया आपको
1: जी, मतलब जीवन के बहुत ही यादगार और खुशनुमा पल आपने बिताए हुए हैं उन दिनों।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बचपन की जो यादें होती हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब बचपना निकल जाता है व्यक्ति का तो वो फिर दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और उस समय गली मोहल्ला ही हमारा विशाल खेल का मैदान हुआ करता था।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक छुआ छुआल भी होता था, जो एक दूसरे कौन कितना तेज दौड़ रहा है उसको भी खेलते थे हम लोग
1: जी। एक दौड़ा उसको आउट किया, फिर जब दूसरा आके उसको छू के चला जाता था तो वो फिर से जिंदा हो जाता था, ऐसे ही कुछ था वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के खेल भी खेलते थे, और गर्मी का एहसास भी नहीं होता था, बुजुर्ग कहते थे कि गर्मी लग गई है। और मैं दीदी जी आपको ये बता दूं कि मुझे एक जो गर्मी के सीजन में 3-4 बार लू लगती थी।
1: ओहो,
2: तो हमारे यहाँ एक जो ये चने का साग होता सूखा है, हमारी दादी लगाती थी मुझे जो है मार मार के लगाती थी, और वो सूखे साग से ही मेरा सब कुछ सही हो जाता था, कोई ना कोई टेबलेट ना कुछ भी नहीं।
1: असल में क्या था ना दिनकर जी, उस समय धूल मिट्टी से सने हुए हम पसीने से तरबतर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे, और हमारे अंदर से ये आवाज आती थी कि थकना मना है जब तक घर से बुलावा ना आ जाए।
2: जी जी जी जी
1: जी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी।
2: और ये आपकी बातचीत मेरे प्रेमदास बाबा और सुन रहे हैं, बाजू में बैठे हैं वो भी जो हंस रहे हैं और सुन रहे हैं।
1: हाँ, उनको भी अपने पुराने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे अपनी बातों से।
2: जी जी याद आ रहे हैं, वो सभी तो मुस्कुरा रहे हैं
1: जी। उनको भी हमारा नमस्कार कहिएगा।
2: नमस्कार कर लिया उन लोगों ने।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
2: जी। दीदी जी
1: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी मैम।
0: किन से हमारी बात हो रही है, हम जान सकते हैं?
1: जी, लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से।
0: लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। लक्ष्मण जी, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे,
1: जी मैम।
0: जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बचपन के खेलों की जो हमने खेले हुए थे। आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं?
1: जी जी जी हमने खेली थी कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, गिल्ली डंडा,
0: अच्छा,
1: अंडा डावरी।
0: इनमें आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था?
1: मैम कबड्डी खेलते थे ज्यादा।
0: कबड्डी खेलते थे?
1: जी जी।
0: अच्छा, ये तो हो गए बाहरी खेल। कभी घर में बैठ के वाला खेल भी खेला है आपने?
1: खो खो वगैरह तो कम खेलने लगी मैम।
0: जी, कबड्डी आपका पसंदीदा खेल था? अच्छा, आज
1: और वॉलीबॉल भी मैन है।
0: वॉलीबॉल?
1: जी जी, हमारे यहाँ होती भी है बहुत ज्यादा। वॉलीबॉल मतलब मुख्य मानी गई हमारे।

0: दमोह जिला की टीम बजी भी गाँव भी हमारे बहुत रही थी।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया
0: जी जी।
1: असल में आजकल क्या हो गया है कि बच्चे चार दीवारी में सिमट के रह गए हैं, वो बाहर खेलना नहीं चाहते, मोबाइल में खेलेंगे, टीवी देखेंगे, तो आप
0: रुचि नहीं रही उनकी
1: जी, रुचि नहीं रही। कुछ हैं बच्चे कुछ जो खेलों में जिनके अभी रुचि है, वो बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं, और बच्चों के भी गेम वही हैं लक्ष्मण सिंह जी, लेकिन कुछ के नाम जैसे चेंज हो गए हैं। हम छुपन छुपाई खेलते थे, वो हाइड एंड सीक बोलते हैं उसको है ना, तो आप अपने बच्चों को अपने पुराने दिनों के खेलों के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये खेला करते थे?
0: हाँ बता रही थी मैम, कल लगे हम जानते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से अपने कहो हमने खेला, तो जितने पुराने खेल हैं वे आप और खेले हैं हमारा बताओ जी। हालांकि
1: अच्छा अच्छा
0: बच्चों के लिए
1: ठीक है। लक्ष्मण सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुला जिला दमोई मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं हमारे बचपन के खेलों की।
1: जी
0: जी, तो उस दौर में 80-90 का जो दशक था और उससे पहले भी हम जो खेल खेलते थे उसके बारे में, बचपन के दिनों के खेलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप कौन कौन से खेल खेलते थे बचपन में?
1: बचपन में हम तो गिल्ली डंडा खेलते थे।
0: अच्छा, गिल्ली डंडे का खेल कैसा होता है ये हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत से नए बच्चे हैं जो वो जानते तो हैं इस खेल का नाम कि गिल्ली डंडा ये है, पर उसको खेलते कैसे हैं ये वो नहीं जानते।
1: एक लकड़ी का डंडा होता था
0: जी,
1: और एक छोटी लकड़ी होती थी
0: जिसको गिल्ली कहते हैं।
1: उस लकड़ी को छोटी लकड़ी पर मारते थे, वो उछलते थे तो वो दूर चली जाती थी। जिसकी लकड़ी वो दूर जाती थी,
0: हाँ,
1: और उससे जो जिसकी लकड़ी पास जाती थी उस पर दाम पड़ता था।
0: अच्छा
1: जी,
0: दूर वाला है वो जीत जाता था।
1: वो जीत जाता था
0: जी,
1: पास वाला
0: हार जाता
1: नहीं
0: था,
1: जीतता था।
0: हाँ, आपको याद है अभी भी अपना खेला हुआ खेल?
1: तीन चार लोग, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग भी खेल सकती थी
0: जी।
1: और एक बात ये भी है मैडम कि पुराने खेल जितने थे
0: जी,
1: वो जितने भी बच्चे लोग खेलते रहते थे तो हर प्रकार से कोई ना कोई व्यायाम उसमें होता रहता था।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ रहता था
0: जी। बहुत जरूरी है खेल। आजकल बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं, घर में ही रहते हैं, लेकिन खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है, वीडियो गेम खेलने लगे हैं मोबाइल पर
0: जी,
1: तो इसमें स्थिर बैठे रहते हैं तो ये आंखों के लिए भी परेशानी होती है और थोड़ी दिमाग के लिए भी परेशानी होती है
0: जी। बहुत दिक्कत वाला है ये, घर में बैठ के बच्चे जो मोबाइल खेलते रहते हैं उनसे आंखें भी उनकी खराब होती हैं, सेहत पे भी गलत असर पड़ता है उनकी फिजिकल।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली।

0: कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गाँव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं

मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के
न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है।

स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे साथियों। हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है।

और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता,
गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत

और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा

0: कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देख तुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। भोपाल बीएचएल दशहरा मैदान में आज शाम 5 बजे से फिल्म पेदी के म्यूजिकल इवेंट पेदी की आवाज का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान की लाइव परफॉर्मेंस होगी। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमने गीत लिया है फिल्म आंखें से, और स्वर है लता मंगेशकर के, गीत लिखा है सुधीर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। इस गीत को सुनना चाहा है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से।

0: कभी कभी।
1: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म इज्जत से, स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। साहिल लुधियानवी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय ने, श्रीमती रोशनी राय ने और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में साहिर की लिखी रचना को। धुन बनाई है खयाम ने और फिल्म है कभी कभी। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से

कार्यक्रम का अगला और बहुत ही खूबसूरत गीत पसंद किया है श्रोताओं ने। ये गीत है फिल्म धर्मात्मा का और इस गीत को गाया है मुकेश और कंचन ने। शब्द रचना हिंदीवर की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अ मुंबई। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की, शब्द रचना इरशाद कामिल की और प्रीतम की। गीत सुनना चाहा है आपने नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

0: अदम्य शक्ति
1: एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी।

श्रोतागण को मेरा प्रणाम। सभी बच्चे बूढ़े अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर ले, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पंचतंत्र की कहानियों का सिलसिला। काकोलुकियम की प्यारी प्यारी कहानियों को आगे बढ़ाते हुए पहली कहानी इस प्रकार है। महिला रोप्य नगर में देव शक्ति नाम का एक राजा रहता था। उनका

0: एक ही पुत्र था जिसे लेकर महाराज अत्यंत चिंतित रहते थे, क्योंकि राजपुत्र के पेट में एक सर्प रहा करता था। उस उदरस्थ सर्प के कारण उसका स्वास्थ्य क्षीण होता चला जा रहा था।
1: हे ईश्वर, लोग पुत्र धन मांगते हैं, मुझे आपने पुत्र धन देकर भी इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ दिया। हर प्रकार से चिकित्सा करवा चुका हूं, अच्छे अच्छे वैद्यों, शास्त्रीय विधि से निर्मित औषधियां, कितने प्रकार के उपचारों के उपरांत भी राजपुत्र स्वस्थ नहीं हो पा रहा है।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आप मुझे लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं। युवा पुत्र मां बाप के दुखों को बांटता है, उनकी चिंताएं दूर करता है, और मैं
1: नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। तुम चिंता ना करो पुत्र, तुम चिंता ना करो।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आपके हृदय में क्या दुख है। मैं आपको और दुखी नहीं देख सकता। मैं आज ही रात इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा।
1: उसी रात को राजपुत्र ने महल छोड़ दिया। दूसरे नगर में जाकर भिक्षाटन करके वो जीविका चलाने लगा और रात में एक विशाल देवालय में सोकर अपना समय व्यतीत करने लगा। जिस नगर में राजकुमार रहता था उसी नगर का राजा था बलि। उसकी दो कन्याएं युवा हो चुकी थीं। सूर्योदय काल में दोनों प्रतिदिन पिता के चरण स्पर्श करती।
2: प्रणाम पिताश्री।
3: सौभाग्यवती भवा।
2: पिताश्री, आपकी ही कृपा से मुझे संपूर्ण सुख भोगने को मिलता है।
3: आयुष्मान भवपुत्री, मेरी कन्याओं को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा।
4: परंतु महाराज, मैं तो अपने भाग्य फल का ही उपभोग करती हूँ, आप तो निमित्त मात्र हैं।
3: दृष्टा, ये तुम्हारा दुस्साहस है। मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बात कहने में तनिक भी भय नहीं हुआ तुम्हें?
4: भय? भय कैसा पिता महाराज, ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है। मैं भी सिर्फ अपने भाग्य का ही खाती हूँ।
3: अच्छा, इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने ईश्वर पर? मैं भी देखता हूँ भाग्य कब तक तुम्हारा साथ देगा। महामंत्री, इस कटुभाषिणी कुमारी को ले जाकर इसका विवाह किसी परदेसी के साथ करवा दो, जिससे अपने कर्मों का भोग करे। जाओ।
4: जैसी आज्ञा पिताश्री।
1: मंत्रियों ने भी राजकन्या को ले जाकर उसका विवाह उस देवालय वासी राजकुमार के साथ कर दिया। राजपुत्री प्रियंवदा ने भी प्रसन्न मन से उसे पति देवता की तरह स्वीकार कर लिया। उसे लेकर वो दूसरे नगर में चली गई।
4: आइए स्वामी, आइए, आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं समीप के बाजार में जाकर कुछ घी, तेल, नमक, चावल लेकर आती हूँ। आप भी भूखे होंगे।
1: वस्तुएं क्रय करके लौटने पर उसने देखा

0: राजपुत्र किसी सर्प के बिल पर सिर रखकर सो रहा है।
1: हे भगवान, ये क्या? स्वामी के मुख से सर्प फन निकाल कर बैठा है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अरे, इस बिल से तो एक सर्प निकल रहा है। क्या करूं? हे ईश्वर, कैसे स्वामी के प्राण बचाऊं? हे ईश्वर, अरे ये सर्प तो कुछ बोल रहे हैं।
2: अरे दुष्ट, इस राजपुत्र को तुम इस प्रकार क्यों कष्ट दे रहे हो? निकल क्यों नहीं जाते इसके शरीर से?
3: पापी, इस वृक्ष के विवरण में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों घड़ों को तुमने क्यों दूषित कर रखा है?
2: दुष्ट आत्मा, क्या तुम्हारी औषधि कोई नहीं जानता कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीस कर गरम जल के साथ पीने से तुम मर सकते हो?
3: तुम्हारी भी औषधि को क्या कोई नहीं जानता? गर्म तेल अथवा खोलते हुए जल को बिल में डालने से तुम मर सकते हो।
1: आज का एक क्षण मेरे जीवन में कितना आनंद दे गया। मैं अभी ये उपाय करती हूँ, मेरे स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है।
0: दोनों सर्प मर गए। धन और स्वस्थ पति को लेकर प्रियंवदा श्वसुर गृह लौट गई। इसीलिए कहते हैं, परस्पर विवाद में एक दूसरे के रहस्यों को व्यक्त करने वाले सर्पों की तरह मरते हैं। अब हम सुनेंगे रथकार की कथा। कान्यकुब्ज नगर में वीरवर नाम का एक रथकार अपनी पत्नी कामदमनी के साथ रहता था। कामदमनी व्याभिचारिणी थी। एक बार वीरवर ने सोचा,
4: मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसके उल्टा होने की चर्चा तो सुन चुका हूं, आज मैं स्वयं ही इसकी परीक्षा लूंगा।
5: सुनो प्रिय।
6: जी कहिए।
5: कल प्रातः काल मैं समीप के गांव में जा रहा हूं, बहुत आवश्यक कार्य है, इस कारण कई दिन लग जाएंगे। भोजन के लिए कुछ बना दो तो अच्छा रहेगा।
6: अरे वाह, ये तो मेरी मनोकामना ही पूरी हो गई। हाँ हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए। परंतु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? आप अति शीघ्र वापस हो आइएगा, मैं आपके लिए शुद्ध पकवान बनाऊंगी।

0: दूसरे दिन प्रातः काल होते ही वो रत्कार घर से बाहर चला गया। पति को बाहर गया हुआ समझकर कामदमनी ने किसी प्रकार दिन व्यतीत किया। शाम होते ही श्रृंगार कर अपने प्रेमी देवदत्त के पास जाकर बोली,
1: प्रिय।
2: हाँ?
1: मेरा दुष्ट पति किसी अन्य गांव को चला गया है।
2: अच्छा,
1: जब सब सो जाएं तब चुपचाप मेरे घर आ जाना, मुझसे तो अब ये विरह वेदना सही नहीं जाती है।
2: ठीक है, आ जाऊंगा।

0: और इधर की कहानी सुनिए। रथकार घर से तो निकला दूसरे गांव का कहकर, पर वो वन में दिन भर बैठा रहा। शाम होते ही घर के झरोके से प्रवेश कर पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया। इसी बीच उसकी पत्नी का प्रेमी देवदत्त भी आकर पलंग पर बैठ गया।
1: दुष्ट अधर्म, जी तो चाहता है अभी निकल कर इनकी हत्या कर दूं। नहीं, जब दोनों साथ में हो तभी निकल कर इन्हें चौंका दूंगा और एक साथ ही मार डालूंगा।
2: उफ, कब से इस पल की प्रतीक्षा में थी मैं।
3: हाँ, मैं भी।
2: मैं दरवाजे पर साकर लगा कर आती हूँ।
3: ठीक है।
2: लो, मैं बैठ गई, अब बताओ। अरे अरे, ये मेरे पैर किससे टकराए? कहीं ये मेरा पति तो नहीं? अवश्य वो मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं अभी बताती हूँ। श्रीमान देवदत्त जी, आप मेरे शरीर का स्पर्श न करें, क्योंकि मैं अत्यंत साध्वी, प्रतिव्रता एवं महासती हूँ। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी।
4: यदि ऐसा ही करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों?
2: सुनिए, आपको यहाँ बुलाने का कारण अभी बताती हूँ। आज प्रातः काल मैं चंडिका मंदिर गई थी।
4: मंदिर? और तुम?
2: मेरी बात सुनो। जी हाँ, मैं देवी दर्शन के लिए गई थी। मेरे वहां पहुंचते ही देववाणी हुई। मैं तुमसे कैसे कहूं, परंतु तुम मेरी भक्त हो, तुम्हें सत्य बताना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से तुम 6 माह में विधवा हो जाओगे। मैंने देवी से पूछा, भगवती, जैसे आप मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति को जानती हैं, उसी प्रकार आप इस विपदा के प्रतिकार को भी जानती होंगी। कृपया मेरे पति के शतायु होने का उपाय क्या है, बताएं। देवी बोली, उपाय है पुत्री, परंतु बड़ा कठिन है। तुम्हारे अतिरिक्त इस विपदा का प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है। फिर मैंने पुनः निवेदन किया, देवी, देवी, यदि वो उपाय मेरे प्राणों के परित्याग से भी संभव है तो भी मुझसे अवश्य कहिए, ताकि मैं शीघ्र उसे कर सकूं। देवी ने पुनः कहा, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ शैया पर उसका आलिंगन करो तो तुम्हारे पति की विपदा उस पर चली जाएगी और तुम्हारा पति शतायु हो जाएगा। हे सज्जन, अब ये आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं या नहीं, परंतु ये निश्चित है कि देवी का कथन असत्य नहीं होगा।
4: भद्रे, अगर मैं अपने जीवन का दान कर तुम्हारे जैसी नारी के सिंदूर की रक्षा कर सकूं, तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। आओ कामदमनी, आओ।
2: हाँ देवदत्त,
4: आओ।
1: हे कामदमनी, तुष्टों के कहने से मेरे मन में तुम्हारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया था। हरी परीक्षा लेने के लिए मैं चारपाई के नीचे छिपा बैठा था। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है। तुम पतिव्रत नारियों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि पर पुरुष के साथ रहकर भी तुमने संयम का पालन किया। ये सब तुमने अपने पति की आयु वृद्धि के लिए किया। तुम धन्य हो कामधमनी, तुम धन्य हो।
2: स्वामी, स्वामी, आपने मुझे पहचान लिया। धन्यवाद तो इस देवदत्त का

0: करना चाहिए जिसने सब कुछ जानकर भी मेरा साथ दिया।
1: महाशय, मेरे सत्कर्मों के फलों से आप यहाँ पर आए, आप ही की कृपा से मुझे 100 वर्ष की आयु मिली। आइए मेरे हृदय से लग जाइए, मैं आज सबको बता दूंगा कि आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है।
2: मूर्ख वीरवर प्रत्यक्ष रूप से पाप करते हुए देखकर भी झूठे समाधान से संतुष्ट हो गया। इन सारी कथाओं को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि दूसरे की बातों से नहीं स्वयं विचार करके ही निर्णय लेना उचित है। इसके पश्चात स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को ये भी बताया कि यदि आप छोटी योनि के हैं तो समान वर्ग के साथ ही मित्रता या शत्रुता शोभा देती है। एक और कथा भी सुनाई। गंगा के तट पर एक आश्रम था, वहां के कुलपति महर्षि याज्ञवल्क्य थे। एक बार वे गंगा के पवित्र जल का आचमन करने ही वाले थे कि तभी किसी पक्षी के मुख से छूटी हुई एक चूहिया उनके हाथ में आकर गिरी। उन्होंने तपोबल से उस चूहिया को कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे लेकर आश्रम लौट आए। अपनी पत्नी से बोले,
3: भाग्यवान, इस कन्या को ले जाओ, इसे अपनी ही कन्या समझना, प्रयत्न पूर्वक इसका पालन करो, ये ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद है।
0: जो आज्ञा स्वामी।
2: समय बीतने लगा।
0: स्वामी, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है, इस कन्या के विवाह का उचित समय आ गया है।
3: देवी, आपने ठीक ही कहा, इसका विवाह मैं योग्य वर से ही करूंगा। यदि आप कहें तो भगवान सूर्य को बुलाकर उनके साथ पुत्री का विवाह करा दूं।
0: ये तो उत्तम विचार है, आप ऐसा ही कर।

0: पुत्री, क्या सूर्यदेव तुम्हें पसंद हैं?
1: तात, ये तो अत्यंत दाहक हैं। मैं इनके साथ विवाह करना नहीं चाहती। आप किसी श्रेष्ठ वर का आह्वान कीजिए।
0: मेघराज सूर्य देव से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सूर्य को भी आच्छादित कर देते हैं। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ।
1: नहीं पिताश्री, मेघराज तो काले हैं। मैं अन्य श्रेष्ठतर से विवाह करूंगी।
0: मेघराज को वायुदेव अपने आघात से छिन्न भिन्न कर देते हैं। पवन देव मेघराज से श्रेष्ठ हैं।
1: पवन देव? नहीं नहीं तात, पवन देव अत्यंत चपल हैं। आप उनसे भी श्रेष्ठ का आह्वान कीजिए।
0: पुत्री, मुझे लगता है पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत हैं, जो पवन देव के हिलाए भी नहीं हिलते।
1: पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत? परंतु पिताजी, वो तो बहुत ही कठोर और निश्चल है। आप किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से मेरा विवाह करें तो अच्छा हो।
0: तो फिर पर्वतराज से श्रेष्ठतर तो चूहे हैं, जो अनायास ही पर्वत में भी छिद्र कर देते हैं। तो क्या मूषक राज तुम्हें पसंद है? मैं उनसे तुम्हारा विवाह करा दूं।

0: इस कथा को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि समान वर्ग या योनि में ही मित्रता या शत्रुता लाभदायक होती है और वही उचित भी है। इसी कारण इतने सुयोग्य पात्रों को छोड़कर उस मूषिका ने समान योनि के मूषक को ही चुना। एक बार मेघवर्ण के पूछने पर स्थिर जीवी ने कहा, वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की योजनाएं बना रहा है। वहां उलूक राज को उनके ही मंत्रियों के विरुद्ध भड़का रहा है। मेघवर्ण ने उससे पूछा कि आगे क्या होगा और वो शत्रुओं के पास क्यों गया, तो स्थिर जीवी ने बताया,
1: मित्र मेघवर्ण, मैं बस उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में था। मैंने उनमें फूट डाल दी थी। अब वो उलूक राज अपने ही बंधुओं द्वारा पीड़ित हैं। देखा, मैंने बीच में कार्य को नहीं छोड़ा।
2: तात, आपका कथन यथार्थ है। महान व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होते हुए भी आरंभ किए हुए कार्य को विघ्न के भय से नहीं छोड़ते। आपने बुद्धि के द्वारा मेरे शत्रु का विनाश करके मेरे राज्य को निष्कंटक कर दिया है। मैं अत्यंत भाग्यवान हूं।
1: नहीं महाराज, भाग्यवान तो मैं हूं। आपके सानिध्य में किया हुआ कार्य स्वयं ही सिद्ध होता चला गया। जो कार्य विचार और बुद्धि से किया जाता है वो विजयकारक होता है।
2: नीति शास्त्र निश्चय ही फलकारक होता है। नीति शास्त्र के बल से ही आप मेरे शत्रु अरिमर्दन के विश्वस्त एवं अनुकूल बन गए और उसके गुप्त भेदों को जानकर उसे सपरिवार विनष्ट कर दिया।
0: और इस प्रकार एक दूसरे का धन्यवाद कर दोनों ने कृतज्ञता स्वीकार की। आज काक और उलूक की कथा समाप्त हुई। काकोलुकियम के पश्चात हम सुनेंगे लब्ध प्रणाश। अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। नीट पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। सीबीआई ने इस कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की एक फिजिक्स टीचर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

समय की कद्र जो करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर प्रयास सफलता देता है। इस विचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, भारत एक विकासशील देश है जहां आज भी कई क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम पोषण योजना, जो पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे नियमित रूप से विद्यालय आए। बहनों, इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि कुपोषण को समाप्त करना। बहनों, बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इस योजना के माध्यम से उन्हें संतुलित आहार प्रदान किया जाता है और जब बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है तो उनकी उपस्थिति बढ़ती है और गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होते हैं। पौष्टिक भोजन से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। सभी बच्चों को एक ही स्थान पर भोजन मिलने से समानता की भावना भी विकसित होती है और भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, फल भी शामिल होते हैं। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहनों, पीएम पोषण योजना के अनेक लाभ हैं, जिनका प्रभाव समाज और बच्चों दोनों पर पड़ता है। जैसे बच्चों का स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा में सुधार, गरीबी में राहत, बाल श्रम में कमी और सामाजिक विकास। बहनों, पीएम पोषण योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इनकी निगरानी करते हैं ताकि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। पीएम पोषण योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना की भूमिका निभा रही है। यह न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुधारती है और शिक्षा को भी बढ़ावा देती है। यदि इस योजना को सही ढंग से और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो भारत सरकार में कुपोषण और अशिक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार पीएम पोषण योजना देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाली एक मजबूत योजना है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है ज्वार भाटा।
1: ये समझो और समझाओ, होली में मौज मन

बहनों, अभी हमने सुना गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम ज्वार भाटा। बहनों, भारत की प्रसिद्ध प्रसारण संस्था आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर

0: पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती सरिता सलील जी, जो एक वरिष्ठ कवियत्री हैं। आपने पिछले 45 वर्षों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना और सराहा है। सरिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: सरिता जी, आपके जीवन में आकाशवाणी का क्या महत्व रहा है?
2: आकाशवाणी का महत्व तो वही बता सकता है जो उसे सुनता है, और मैंने तो बचपन से ही रेडियो को सुना है, तो मेरे ऊपर तो काफी उसका प्रभाव भी पड़ा है और उसका महत्व भी मैंने जाना है कि आकाशवाणी को सुनने से कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे अंदर कितने परिवर्तन आते हैं, और वो शायद हम नहीं जान पाते लेकिन सामने वाला व्यक्ति जरूर जान जाता है जो हमसे रूबरू होता है, क्योंकि हम उसको रेडियो को सुनकर उसकी भाषा शैली, उसकी प्रस्तुति, गीत संगीत, समाचार और बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें, लोक संस्कृति, कहने का मतलब कि हमारे जो व्यक्तित्व विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है वो हमें आकाशवाणी से यानी रेडियो से मिलती है। जी
1: अच्छा सरता जी, क्या आपको बचपन में रेडियो सुनने की कोई विशेष याद आज भी याद है आपको कि आपने कोई विशेष प्रोग्राम सुना रही है?
2: जी जी जी कल्पना जी, बिल्कुल याद है, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती थी क्योंकि बचपन से ही मैं रेडियो सुनती थी, और मेरे पापा सुबह से यानी जब से सभा शुरू होती थी और रेडियो शुरू कर देते थे, तो जो मंगल ध्वनि वगैरह जो बस्ती में शुरू में
1: जी जी
2: उनसे हम लोगों की शुरुआत होती थी दिन की, और चूंकि स्कूल में पढ़ते थे तो उसी के साथ हमको जगाया जाता था, और बिस्तर छोड़ते छोड़ते मालूम है कल्पना जी हम लोगों को 6:35 हो जाते थे कि जब रामचरित मानस आने लगा।
1: अच्छा
2: जी जी, और उसके बाद हम लोग दौड़ लगाते थे जल्दी से तैयार होना है क्योंकि 7 बजे फिर स्कूल भी जाना है, और स्कूल जाते जाते जैसे ही 7:10 या 7:05 पर जो प्रादेशिक समाचार आते हैं उसकी वो संकेत ध्वनि बजती है और हम लोग स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब कि बचपन ही मेरा जो है रेडियो से ही पूरा टाइम जुड़ा हुआ था।
1: अच्छा सरदा जी, आपके अनुसार आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृत और संगीत को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है कल्पना जी, संस्कृति और संगीत साथ में बहुत सा ज्ञान विज्ञान भी, सिर्फ संस्कृति और संगीत ही नहीं, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, बहुत सारे समाचार, बहुत सारी योजनाएं हमारे देश के कोने कोने तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंची।
1: अच्छा
2: रेडियो जी, रेडियो जो है वो हमारे लिए जैसे सूर्य की रोशनी तब तक देखती होती है
1: जी जी,
2: वैसे ही रेडियो ने हर आम और खास तक हमारी सारी योजनाएं, हमारी संस्कृति को, हमारे समाचारों को, हमारे संगीत को बहुत ही तरीके से पहुंचाया और हर किसी को इसका लाभ दिया। बचपन का किस्सा थोड़ा सा और सुधारना चाहूंगी क्योंकि बात अद्भुत मैं जब 7 बजे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो उसके बाद जब घर लौटे और उसके बाद रात में क्या होता था, शाम को खेलने के बाद हम लोग 7 बजे पढ़ने के लिए बैठा दी, और जैसे ही 8:45 पर दिल्ली से समाचार आते थे और पापा हमारे समाचार सुना करते थे तो हम लोगों के कान लगे रहते थे कि जैसे ही समाचार शुरू हुए मतलब कि 9:45 बज गए और हम लोगों के बच्चे बंद, मतलब पढ़ाई करते हम आप खाने का टाइम,
1: अब खाने का टाइम हो गया
2: और पापा क्या करते थे, मतलब एक मधुर स्मृति है ये, हम लोग हमेशा बैठते हैं तो याद करते हैं कि पापा उस समय थोड़ा सा रेडियो की आवाज धीमी कर देते थे कि बच्चे अभी जल्दी टूट जाएंगे, बिल्कुल धीमा कर देते थे, तो हम लोगों के काम वही लगे रहे कि अब जो है
1: शुरू।
2: ये बहुत ही मधुर स्मृतियां हैं, बहुत ही सुखद यादें हैं बचपन की रेडियो से जुड़ी हुई, वही बताना चाह रही थी आपको।
1: अच्छा सर, ये 90 वर्षों की इस यात्रा को आप किस प्रकार देखती हैं?
2: देखिए कल्पना जी, सबसे पहले बहुत ही गर्व और खुशी की बात है ये
1: जी,
2: एक 90 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरी, बहुत ही यादगार यात्रा जो है यहाँ तक आ पहुंची है, और हम सभी के अनुभव उसके साथ जुड़े हैं क्योंकि हम लोग भी आज उस उम्र में आ गए हैं कि एक लगभग 40-45 साल से हम रेडियो को सुन रहे हैं। अब तो देश की संस्कृति को, ज्ञान विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो रेडियो ने निभाई है, क्योंकि हमने बिल्कुल क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम थे, बच्चों के लिए जैसे बाल मंडली होती है, बाल सभा होती है है ना, और किसानों के लिए होता है हमारे यहाँ कार्यक्रम, महिलाओं के लिए ग्रामीण महिलाओं का अलग है, शहरी महिलाओं का अलग है, और युवा श्रोताओं के लिए युवाणी है। इस तरह से हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही सकारात्मक भूमिका हमारे 90 साल की यात्रा में लोगों ने उसे महसूस किया है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में वो निखार आया है ये सब सुन सुन के।
1: अच्छा सरता जी, ये मतलब एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की उपयोगिता बनी हुई है, और बनी है तो क्यों बनी है?
2: बिल्कुल, दरअसल क्या है कि अगर हम इस यात्रा में कुछ नया भी जोड़ना कर शुरुआत करें, कुछ नए विषय, कुछ आधुनिक तकनीक है ना, इसके साथ अगर हम बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे और किए भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी आकर्षित होगी। और इसको और भी कहते हैं ना कि पंख मिलेंगे और उड़ाने मिलेंगी आगे, नई मंजिलें, नए उनको सोचने के लिए विकास होगा, सोचने की क्षमता में विकास होगा, है ना, तो हर तरफ जो है उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही लाभदायी होगा। और टेक्नोलॉजी आकाशवाणी का एक सबसे बड़ा महत्व मैं अंत में बताना चाहूंगी, तो ये है कि रेडियो सुनते वक्त हमें किसी एक जगह पर स्थिर होके नहीं बैठना पड़ता।
1: सही बात,
2: कहने का मतलब कि मैं हम अपने दैनिक कार्य करते भी रहते हैं और रेडियो सुनते भी रहते हैं।
1: सही बात
2: जी, ये और साधनों में ऐसा नहीं होता और माध्यमों में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेडियो के साथ सबसे बड़ा सकारात्मक जो वो है बिंदु वो ये है कि इसके साथ हम अपने काम भी करते रहते हैं और हम गाने भी सुनते रहते हैं, समाचार भी सुनते रहते हैं और अपनी लोक संस्कृति का भी ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा महत्व रेडियो का ये है आज के दौर में।
1: सरिता जी, आप कवित्री भी हैं, जानी पहचानी हस्ती भी हैं, तो जैसे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपकी कविता के माध्यम से आप आकाशवाणी को कोई शुभकामनाएं दीजिए या संदेश दीजिए, जिससे हमारी बहनों को भी प्रेरणा मिले या उनको भी अच्छा लगे।
2: शुभकामनाएं तो मेरी है ही, लेकिन चूंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है तो मैं महिलाओं के लिए चार पंक्तियां कहना चाहूंगी
1: जी,
2: अपने काव्य पाठ के रूप में
1: जी।
2: कभी राधा बनी संग राधा।

0: बनी और पाप को हरने चली आई, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा चर्चा जी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: बहनों, भारत सरकार ने फरवरी 2026 में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर से लॉन्च किया गया। बहनों, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है। इस कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसी समस्या से बचाव के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ दिनांक 28 फरवरी 2026 स्थान अजमेर राजस्थान से किया गया। बहनों, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना और आने वाली पीढ़ी को कैंसर मुक्त भारत की दिशा में सुरक्षित बनाना है। यह टीकाकरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपलब्ध है। बहनों, यह टीकाकरण महिलाओं की मृत्यु दर कम करने में सहायक और लंबी अवधि की सुरक्षा प्रदान करता है। बहनों, HPV टीकाकरण अभियान भारत की बेटियों के लिए एक जीवन रक्षक पहल है। यह न केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। यदि यह अभियान

सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्षों में भारत को कैंसर मुक्त समाज बनाने में मदद मिलेगी। बहनों आइए सुनते हैं गीत सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, जिसे गाया है कुमार शानू, अलका याज्ञिक, जूली मुखर्जी ने।

बहनों, अभी हमने सुना गीत सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, जिसे गाया था कुमार शानू, अलका याग्निक, जूली मुखर्जी ने, और फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन। बहनों, सौंफ का शरबत एक पारंपरिक और स्वास्थ्य वर्धक पेय है, जिसे विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में पिया जाता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जिसे यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। भारत में पुराने समय से ही सौंफ का उपयोग भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर और औषधि के रूप में किया जाता रहा है, और इसी सौंफ से बना शरबत स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। और इसके लिए आवश्यक सामग्री है सौंफ, पानी, चीनी, नींबू का रस, काला नमक, साधारण नमक और बर्फ के टुकड़े। इसको बनाने की विधि है, सौंफ को एक कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। इससे सौंफ नरम हो जाती है। इसके बाद भींगी हुई सौंफ को उसी पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह से एक मुलायम पेस्ट बन जाएगा। अब इस पिसे हुए मिश्रण को छन्नी या साफ कपड़े की सहायता से छान लें। अब इस अर्क में पानी डालें और उसमें चीनी मिलाएं। चीनी को अच्छे से घुलने तक चलाते रहें। इसके बाद काला नमक, साधारण नमक डालें, जिससे शरबत का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और अंत में नींबू का रस मिलाएं, जो शरबत को हल्की खटास और ताजगी देता है। और अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा ठंडा परोसे। बहनों, सौंफ का शरबत ठंडा ही अच्छा लगता है। इसे आप गिलास में डालकर ऊपर से पुदीने के पत्तों से सजाकर मेहमानों को परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि दिखने में भी आकर्षक लगता है। बहनों, इस शरबत के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि सौंफ शरीर को ठंडक प्रदान करती है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, पेट की गैस और जलन को कम करती है, मुंह की बदबू को दूर करने में सहायक होती है, गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है। बहनों, सौंफ का शरबत एक सरल, सस्ता और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पेय है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से घर पर बना सकता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ गीत और भजन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रकाश तिवारी की गाए गीत और भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम के अंत में प्रकाश तिवारी का गाया ये भजन।

0: प्रकाश तिवारी के गाइस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

अभी आपने सुना मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना थी मजरू की और संगीत ओपी नैयर का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए आर पार फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत भी ओपी नैयर का ही है।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए भरोसा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत रवि का।

0: भरोसा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए यह नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। वह यहां जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और भव्य सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे और भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री NTPC में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास के लिए 513 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं ग्वालियर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आगरमालवा जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर जल स्रोत पूजन एवं कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। शिवपुरी जिले में विकासखंड कोलारस, नरवर, पिछौर, खनिया धाना समेत अन्य स्थानों पर जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जल स्रोतों के बचाव को लेकर जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
2: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
2: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
2: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
2: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित

0: राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55

0: 51 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज का जो पहला गीत है, जिसे हमने लिया है दबंग फिल्म से, आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की, शब्द रचना फैज़ अनवर की और संगीत साजिद वाजिद का। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और विशाल भट्टा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से इस गीत को पसंद किया है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी की। तो इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं दबंग फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा पुंजतवा खान, राउ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और साथियों ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब सुनिए अनाड़ी फिल्म का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। शब्द रचना है समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, कोटवा नारायणपुर बलिया से इस गीत को पसंद कर रहे हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। तो आइए इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में अभी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का गीत, शब्द रचना थी समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा, मुजातबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश खटनकर और वैशाली खटनकर इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट, आप सबकी पसंद का गीत सुनिए जिसे हमने लिया है मुंबई का बाबू फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, शब्द रचना मजरू की और संगीत एसडी बर्मन का।

बम्बई का बाबू, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में अभी इस फिल्म का गीत आपने सुना। शब्द रचना मजरू की थी और संगीत ST बर्मन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं पाकड़ू झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, सारणी जिला बैतूल से इस गीत को पसंद कर रहे हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाबराव निम्बाड़कर और संदीप पाटिल। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है पटेल नगर मालोड पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। और घंटाघर चौक खंडवा से इसे पसंद कर रहे हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। शब्द रचना देव कोहली की है और संगीत राम लक्ष्मण का।

0: हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वे यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26

डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का चौथा भाग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए चंगन सेरी सीपी माधवन नंपुथरी का कर्नाटक गायन। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 और 3 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनिष्का
1: और मैं हूं माधवी और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में,
0: जहां हर शनिवार हम लाते हैं मस्ती मजा और आपका फेवरेट सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें आपको मौका मिलता है हमसे जुड़ने का और अपने फरमाइशी गीतों को सुनने का।
1: लेकिन रुको तनिष्का, सेगमेंट शुरू करने से पहले आज हम एक बहुत ही खास दिन के बारे में बात करेंगे, तो क्यों ना वो भी कर लें।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, आज है 23 मई, यानी कि विश्व कछुआ दिवस। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर वाकई आज है वर्ल्ड टर्टल डे। ये दिन हमें कछुओं और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो तनिष्का, कछुए इतने खास क्यों होते हैं, तुम बताओ।
0: बिल्कुल, क्योंकि कछुए हमारी धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक होते हैं। ये लगभग 20 करोड़ सालों से पृथ्वी पर मौजूद हैं, यानी कि डायनासोर्स के समय से हैं माधवी ये हमारी पृथ्वी पर। कछुए समुद्र, नदियों और जंगलों की इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं।
1: और मैंने ये भी सुना है कि भारत में कई प्रकार के जो कछुए हैं ना, वो पाए जाते हैं, जैसे ओलिव टर्टल, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल और स्टार टर्टल। हर साल ओडिशा के तट पर हजारों ओलिव टर्टल्स अंडे देने आते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि पक्षी हाइबरनेशन करते हैं, वैसे ही टर्टल्स तट पर आते हैं और अपने अंडे देते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, आज ये कछुए खतरे में हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन, समुद्र में फैला कचरा, इलीगल हंटिंग और क्लाइमेट चेंज इनके जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं।
1: कई बार तो समुद्र में फेंका गया जो प्लास्टिक है, वो कछुए खाना समझकर निगल लेते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा करने से उनकी जान तक जा सकती है।
0: और जो ये बढ़ता हुआ तापमान है, इसकी वजह से उनके अंडों पर भी असर पड़ता है। यानी अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद इन्हें सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगी और ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे,
1: जो कि काफ़ी दुखद बात है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं। और वैसे तो तनिष्का, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो आज मैंने पढ़े थे। तो उनमें से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ समुद्री कछुए हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं और उसको करने के लिए उनको बिल्कुल विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। एक और चीज़ है और वो है कि जो जायंट टॉर्टोइस होता है, यानी कि जो जायंट टर्टल होता है, वो उम्र में 100 साल से भी ज़्यादा का हो सकता है।
0: और एक फैक्ट तो मेरे पास भी है, क्या आप जानते हैं सी टर्टल्स अपनी जन्मभूमि वाले समुद्र तट को वर्षों बाद भी पहचान लेते हैं और फिर वहीं वापस आकर अंडे देते हैं। कितना कमाल है ना ये सब।
1: इसका मतलब जो टर्टल्स ओडिशा में आके अंडे देते हैं, क्या ये उनकी जन्मभूमि है? तो दोस्तों, कछुओं को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे शुरुआत तो हमें इस चीज़ से करनी चाहिए कि कचरा ना करें। कोशिश करें कि अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, समुद्र और नदियों को साफ रखें और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो होता है उसमें ज़रूर अपनी भागीदारी निभाएं।
0: और सबसे ज़रूरी बात कि इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाएं। ये जो छोटे छोटे कदम होते हैं, ये हमारी प्रकृति को, इन प्यारे जीवों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं।
1: तो दोस्तों, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में सुनकर, क्योंकि शायद ही कोई जानता होगा कि ऐसा दिन एग्जिस्ट करता है। तो आज के महत्व और कछुओं को बचाने की ये जो ज़रूरत है उसको समझें और साथ में दूसरों को भी इसके बारे में बताएं।
0: बिल्कुल, तो इसी प्यारी सी बात के साथ अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की ओर। तो दोस्तों, फोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो जल्दी से कॉल करें और बताएं कि आपकी फरमाइश आज क्या होने वाली है। तो हम आपको बता देते हैं हमारे फोन नंबर्स
1: 0710, यानी कि जो हमारा फ़ोन नंबर है वो हमारा एसटीडी कोड के साथ आएगा 0731, और जो नंबर है वो है 2710223 या फिर 2710224।
0: तो चलिए अब देखते हैं कि कौन है ये कॉलर जो हमसे जुड़ने वाला है। हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहेंगे?
2: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, तो रतलाम में आज मौसम कैसा है?
2: मैडम आज तो कहीं भी 45-46 डिग्री सेल्सियस मतलब ये है ना,
1: मतलब काफी गर्मी है।
2: हाँ बहुत गर्मी है मैडम आज तो।
0: तो बताइए फिर आप इस गर्मी में गर्मी को कम करने के लिए ठंडक कैसे बना रहे हैं?
2: बस अभी तो घर में बैठे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और फिल्म का निकाह का गीत सुना दीजिए।
1: जी
2: बिल्कुल। छुपा लिया किसी ने हिजाब में।
1: ठीक है जी, तो सुनाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
2: ओके ओके।

0: तो आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो
2: हेलो, हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका?
1: चलो तो ऐसे कछुआ की तरह जो मंजिल पे पहुंच जाए, ऐसे मत दौड़ो खरगोश की तरह जो रास्तों में रुक जाए।
2: वाह क्या बात है, अब इसी बात पे अपना नाम भी बता दीजिए।
1: हसीना भी मंसूर बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
2: अच्छा बताइए हसीना जी, क्या सुनना पसंद करेंगे आप आज?
1: फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानी और गाने के बोल है आंचल।

0: तो जुड़ते हैं अब हम अपने अगले कॉलर से और देखते हैं कि अब क्या फरमाइश हमारे सामने होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश।
0: तो बताइए राकेश जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बेटा मूवी का गाना सुनना है, जब हम जवान होंगे।
2: और हिमाचल में कैसा है मौसम बताइए?
1: हिमाचल में मौसम साफ।

0: बहुत खुशी हुई हमें ये देख के कि हमारे पास कॉलर्स हिमाचल से भी आ रहे हैं।
1: जी,
0: वहाँ
1: आप
0: इतनी
1: कहाँ रहती
0: गर्मी
1: हैं
0: तो
1: मतलब
0: नहीं है
1: कहाँ
0: जितनी
1: आप?
0: गर्मी यहाँ इंदौर में है।
1: नहीं, इतनी नहीं है जितनी इंदौर में है, इतनी गर्मी हमारे क्षेत्र में नहीं है।
0: मतलब आप अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
1: जी, अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, कुदरत की जो है ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ, तो
0: अरे
1: इस
0: वाह,
1: वक्त में
0: ये
1: आपके
0: सुन के
1: प्रोग्राम में
0: हमें
1: कॉल लगा
0: हमें
1: रहा
0: अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इतनी गर्मी में झुलस रहे हैं और आप ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। तो फिर हम भी
1: जी,
0: बनाते हैं प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश आने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। अगर आप शिमला आएंगे तो आपको आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, आपका मन भी शांत रहेगा हिमाचल में, और किसी ठंडी ठंडी हवा जब मिल जाती है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको मीठे मीठे सेब भी मिलेंगे, ताजा ताजा
0: क्या
1: फल।
0: बात है,
1: जी
0: चलिए आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए, सुनिए आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: जी धन्यवाद।

0: हिमाचल प्रदेश से भी इंदौर आकाशवाणी से लोग जुड़ते हैं और अपनी फरमाइश करते हैं और इतनी प्यारी बातें हमसे करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है आकाशवाणी के 90 साल, इंदौर आकाशवाणी के इतने साल, और हमारा ऐसे एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ाव होना, हमारा इतनी बड़ी फैमिली होना, कितनी अच्छी कितनी सुंदर बात है।
0: बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो फ्रेंड जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, क्या नाम है सर आपका?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ मैं, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: अच्छा, कैसे हैं आप, क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप?
2: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपको बताऊँ अभी हिमाचल प्रदेश से राकेश जी का कॉल आया था।
1: हाँ?
2: तो उन्होंने, हमारे यहाँ पे काफी गर्मी है तो उन्होंने थोड़ी ठंडक का महसूस कराया हमें।
1: जी
2: जी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी हिमाचल चले, वहाँ पे ठंडी ठंडी वादियों में घूमे, बड़ा अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है मैं और आप ही नहीं, जितने भी लोग मध्य प्रदेश में हैं इस समय पे, सबको ऐसा लग रहा होगा कि उठकर बस हिमाचल चले जाएं, क्योंकि जिस तरह गर्मी का प्रकोप है यहाँ पर, हिमाचल की ठंडी हवा ही हमें ठीक कर सकती है।
2: जी बिल्कुल, उज्जैन और इंदौर में तो काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।
1: बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, आप सुनना क्या पसंद करेंगे?
2: जी, फिल्म का नाम है करण अर्जुन और गाने के बोले बंधन तो प्यार का बंधन है।
1: बिल्कुल, और महाकाल की नगरी में आपको कैसा लग रहा है?
2: जी हमें तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें महाकालेश्वर बाबा के चरणों में रहने का अवसर मिला है, बार बार बाबा के दरबार में जाने का अवसर मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है।
1: चलिए, आप ये कामना कीजिए कि हमें भी वहाँ जल्दी आने को मिले और हम भी दर्शन कर पाए।
2: जी आपका स्वागत रहेगा महाकालेश्वर के बाबा के दरबार में, एक बार आपकी अर्जी लग जाएगी ना तो आपको मतलब बार बार आने का मौका भी मिलेगा।
1: जी जी, से आप ये प्रार्थना कीजिए, तब तक हम सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जी थैंक यू सो मच।

0: तो चलो जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: फ्रेंड्स।
2: हेलो फ्रेंड्स, चले
0: आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है।
2: अनिल इंदौर
0: जी। अनिल जी बताइए, आप क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
2: आज हमको दिल फिल्म से उदित नारायण पासवान की आवाजों, हमने घर छोड़ा है दोस्तों को तोड़ा है।
0: चलिए बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपको आपकी फरमाइश का ये गीत।
2: जी जी धन्यवाद।

0: जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
2: नमस्ते।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
2: जी भगवान जी, बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आज आप?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है मोहरा और गाने के बोले धारना मोतियों के हाथ, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
2: अच्छा ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, और गर्मी हमारे इधर बहुत पड़ रही है, अभी 45 डिग्री से ऊपर चल रही है हमारे इधर, दिन में हो जाता है तापमान,
2: और गर्म हवाएं भी चल रही होंगी।
1: जी जी दीदी,
2: फिर कैसे क्या कर रहे हैं आप, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: दीदी हम तो है ना दिन भर घर पे, घर पे रहते हैं, धूप में नहीं निकलते, और ठंडा पानी पीते हैं, और कहीं बाहर निकलते तो गमछा वगैरह तौलिया डालकर फिर निकलते हैं दीदी।
0: बिल्कुल, और ठंडी ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम, आम पन्ना, छाछ, इन सब का अगर हम सेवन करेंगे तो ये हमें ठंडा रखने में बहुत महसूस, मतलब ठंडा रखने में हेल्प कर सकती है ना माधवी?
2: बिल्कुल
1: जी हाँ दीदी।
2: तो आप ये सब पी रहे हैं?
1: जी बिल्कुल दीदी, हम फ्रिज में जमा के पी रहे हैं।
2: क्या बात है, चलिए भगवान जी तो इसी बात पे आपको सुना देते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।

0: तो अब सुनते हैं हमारे अगले श्रोता को। हेलो फ्रेंड्स,
1: जय माता।
0: हेलो,
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम कुमार बदला से बात कर रहा हूँ।
0: देखिए, आपसे निवेदन है कि आप रेडियो सेट से थोड़ा दूर आकर हमसे बात कीजिए।
1: जी मैडम, दूर आ गया मैडम।
2: जी बताइए, आप आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैडम, आप कैसे हो मैडम?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनिष्का, आप बता दो।
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
1: जी मैडम, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, हम सुनते रहते हैं मैडम।
2: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: जी मैडम, आज मैं फिल्म का नाम रहेगा मुकंदर और गाने के बोल है सूर्या
0: तो लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपने पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: चलिए तो अब लेते हैं अपने अगले कॉलर को. हेलो फ्रेंड्स.
1: जी नमस्कार.
0: नमस्ते.
1: मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील खारसी गांव कंठी से.
2: क्या बात है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: ये आज मैं रोटी फिल्म का गाना सुनूंगा.
2: कौन सा?
1: वो एक गाना है नाची मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, वो वाला गाना सुनना है मुझे किशोर कुमार जी की आवाज में.
2: चलिए अब आप भी बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत है, क्या लग रहा है, कैसा सुहावना मौसम है, थोड़ा और सुन ले हम.
1: जी मौसम तो बहुत अच्छा रहता है, सुबह शाम तो अच्छी ठंडी हवाएं चलती है, दिन में थोड़ी सी धूप खिलती है और गर्मी इतनी हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होती है. तो मैं प्रार्थना करता हूँ बाकी जगहों में भी थोड़ी बारिश हो जाए, ठंडक मिल जाए सबको.
2: बिल्कुल बिल्कुल, भगवान करे आपकी प्रार्थना सुन ली जाए. और फिलहाल हम आपका फरमाइशी गीत सुन लेते हैं.
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी.

0: तो चलिए अब लेते हैं आज का हमारा ये आखिरी कॉल। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो का मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सुजाता सिटी मध्य उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूँ।
2: जी सर, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आप लोग कैसे हैं?
2: हम भी अच्छे हैं। बताइए आप आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी, यहाँ पर जबरदस्त गर्मी हो रही है, प्रचंड धूप रहती है, तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जा रहा है और चिलचिलाती हुई धूप में जब हम आकाशवाणी से जुड़ते हैं और आपसे वार्तालाप करते हैं, काफी सुकून महसूस होता है।
2: चलिए, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए कि आपका फरमाइशी गीत कौन सा है?
1: जी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सागर और गीत के बोल हैं, चेहरा है या चांद खिला, धूप झनेरी शाम है क्या, प्यारा सा खूबसूरत गीत।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया है आपने। और अब सुन लेते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: जी धन्यवाद, आप सभी मंगलमय हैं।

0: चलिए दोस्तों, तो समय हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। जिन भी कॉलर्स का फ़ोन आज नहीं लग पाया है, वो अगले सैटरडे ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ मैं हूँ माधवी
1: और मैं हूँ तनिष्का। नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण किया जा रहा था। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी। आइए अब लुत्फ लेते हैं फिल्म संगीत का।

दाग दी फायर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पाटवाल के युगल स्वर में। शब्द रचना समीर की थी।

0: आप सुन रहे थे फिल्म तेरे नाम का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में, शत्रुष्ण समीर की संगीत हिमेश रेशमीय का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, प्रस्तुति दीपलक्ष्मी त्रिपाठी की।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर गांव डिजिटल हो, हर युवा के पास अवसर हो, हर शहर आधुनिक हो और पूरी दुनिया भारत को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखे। यह सिर्फ एक सपना नहीं, यह है भारत 2047 का विजन। स्वागत है आप सभी का। आज मैं

0: आपके साथ हूँ दीप लक्ष्मी त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।
1: बदलता भारत, विकसित होता भारत।
0: श्रोताओं, साल 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, उस समय देश के सामने कई चुनौतियां थी। गरीबी, कमजोर व्यवस्था, सीमित संसाधन और विकास की लंबी राह। लेकिन आजादी के 100 साल पूरे होने तक, यानी 2047 तक, भारत का सपना है एक विकसित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनना। 2047 यह केवल एक साल नहीं है, यह वह ऐतिहासिक क्षण होगा जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। जब हम भारत 2047 की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है श्रोताओं, जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, तकनीक में अग्रणी हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और पूरी दुनिया में सम्मान और नेतृत्व का स्थान रखता हो। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या केवल बड़ी इमारतें, तेज सड़कें और आधुनिक तकनीक किसी देश को विकसित बना सकती हैं? उत्तर है नहीं। किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी जनता होती है और जनता की सबसे बड़ी शक्ति होती है शिक्षा। इसलिए भारत 2047 के सपने को साकार करने में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवाओं की है। यह युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और अवसर मिले तो यही युवा भारत को विश्व शक्ति बना सकते हैं।

0: यदि किसी देश का भविष्य देखना हो तो उसके विद्यालयों को देखिए। शिक्षा केवल पढ़ना और लिखना नहीं सिखाती, यह सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है, वह अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझता है, वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता विकसित करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है, जिसका लाभ केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र उठाता है। इसी विषय पर और ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक संजय कुमार मिश्रा जी। संजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैडम। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान, जिला इंदौर में पदस्थ हूँ।
0: संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है?
1: मुझे तो ये लगता है मैडम कि शिक्षा ही वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करती है। इसके अलावा तो कोई और दूसरा बेस हो ही नहीं सकता। पहला उद्देश्य यही है कि हमारा जो बच्चा है वो समाज में रहने लायक वो बने, एक अच्छा नागरिक बने, सम्मानित नागरिक बने। और जब तक वो अच्छा नागरिक नहीं बनेगा तब तक वो ना अपने लिए और ना अपने परिवार के लिए, ना अपने प्रदेश और देश के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तो शिक्षा ही वह प्लेटफॉर्म है जिसके जो अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक स्थल है, और इसके अलावा तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता मैडम।
0: संजय जी, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा का क्या महत्व है?
1: विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा ही महत्व होता है। हमें 3 साल की उम्र से लेकर और 18 साल तक की उम्र तक सभी बच्चों को हमको शिक्षा के दृष्टिकोण से उनको 100% साक्षर बनाना है, शिक्षित बनाना है, और ऐसी शिक्षा बनानी है ताकि वो आगे चलकर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, एक अच्छे नागरिक बन सके हमारे देश के। तो शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और 2047 तक पूरी उम्मीद है कि हमारा देश जो है पूर्ण साक्षर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा।
0: कौशल आधारित शिक्षा विजन 2047 में क्यों आवश्यक मानी जा रही है?
1: NEP 2020 में ये रखा गया है, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो भी बच्चे हमारे आज की डेट में शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चा आगे चलकर स्वयं अपने बल पर वो किसी न किसी रूप से आत्मनिर्भर बन सके, अच्छा व्यवसाय कर सके और अच्छी आय का के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बन सके। सभी लोग केवल नौकरी पर डिपेंडेंट न रहें और अगर वो स्वरोजगार की दिशा में जाते हैं उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए और देश के लिए निश्चित तौर पर वो बेहतर होगा। इसीलिए स्किल एजुकेशन को प्रमुखता से NEP 2020 में रखा गया है और कक्षा 8वीं से ही उसको व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देकर जो बच्चे का अपना स्वयं का इंटरेस्ट है जिस क्षेत्र में उसको

0: क्षेत्र में जाकर उसको उस क्षेत्र के संबंध में, उसको रोजगार के संबंध में उसको सारी जानकारी देकर, उसको व्यवसायिक कोर्स कराकर उसको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
1: बहुत अच्छा संजय जी। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या क्या है संजय जी, और विजन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकती है?
0: प्रमुख उद्देश्य ये है, शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि जब बच्चा हमारा 3 साल का हुआ है तो उसको सभी को एजुकेशन प्राप्त हो सके, 100% सभी हमारे विद्यालय की मुख्य धारा में सम्मिलित हो, कोई ड्रॉप आउट बच्चा न रहे, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सब आगे बढ़े। और उसके अलावा जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, राष्ट्र के सहयोग में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके, ये उद्देश्य पूर्ण हो, इसलिए 2020 का जो हमारा लक्ष्य है उसको सभी को शिक्षा देते हुए, हम अपने लक्ष्य को सभी को आत्मनिर्भर बनाते हुए, सभी को रोजगार से जोड़ते हुए देश को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
1: संजय जी, सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, तो कौन कौन सी वो प्रमुख योजनाएं हैं जो इस दिशा में चलाई जा रही हैं?
0: ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा विद्यालय में एस्टेब्लिश्ड हो, रुके, उसका ठहराव हो, कि जो पढ़ाई है वो टूटे ना, बीच में रुके ना। ये छात्रवृत्ति योजना है, छात्रवृत्ति योजना से बच्चे को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उद्देश्य है, ताकि अगर छोटी मोटी उसकी जरूरतें हैं विद्यालय में रहते हुए तो उसको पूरा कर सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में मिड डे मील योजना है, बच्चा हमारा ऐसा ना हो घर से भोजन करके ना आए तो उसकी सरकार ने व्यवस्था की है, बच्चा स्कूल में रुके। साथ में हमारी गणवेश की योजना है कि बच्चा अगर भोजन पा रहा है, छात्रवृत्ति पा रहा है तो उसको यूनिफॉर्म भी प्राप्त हो। इस साल हमारी एक योजना और चालू की जा रही है, दूध भी बच्चों को वितरित कराया जा रहा है 1 से 8 तक, ताकि बच्चा हमारा पोषण आहार प्राप्त कर सके। इसके अलावा हमारे पास साइकिल की योजनाएं हैं, हमारी बेटी अगर 3 किलोमीटर दूर से अगर वो विद्यालय आ रही है तो उस विद्यालय उसका न छूटे। इसके अलावा शिक्षकों को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दीक्षा पोर्टल प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, इसके माध्यम से टीचर जो है अपने क्षेत्र के संबंध में ढेर सारी चीजें समझ सकता है, सीख सकता है, मैनेजमेंट जान सकता है, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, कक्षा में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समाज के साथ और अपने अधिकारियों के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये भी दीक्षा पोर्टल के माध्यम से इसका सिखाया जाता है। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो बच्चों को आगे चलकर 12वीं के बाद लैपटॉप की योजना है, स्कूटी की योजना है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी कमी सरकार ने छोड़ी नहीं है, उद्देश्य केवल एक ही है, बच्चा हमारा विद्यालय में आए, उसका ठहराव हो और जो उसकी पढ़ाई है निरंतर अबाध रूप से वो चलती रहे, ये वो प्रमुख उद्देश्य है। और हम इस उद्देश्य में लगातार सफल हो रहे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हमारे कम हो रहे हैं, लगातार हम सर्वे करके उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, तो ये सारी योजनाएं इसमें सहायक सिद्ध हो रही हैं।
1: बिल्कुल संजय जी, 2047 का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं पूरा जरूर होगा। हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और शहरी शिक्षा के अंतर को कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?
0: देखा जाए तो जो हमारा जो पलायन हो रहा है ग्रामीण से शहर की ओर, उसको रोकने के लिए सरकार ने वो सारी योजनाएं, अगर आप देखें साइकिल की योजना ग्रामीण की योजना है, तो सरकार वो सभी प्रयास कर रही है कि ग्रामीण से शहर की ओर पलायन ना हो, सारी जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के संबंध में, जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं लागू की जा रही है, जो योजनाएं हमारी शहर में है ठीक वही योजनाएं हम गांव में भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि वहां असीमित वहां पे संभावनाएं हैं बच्चों के पढ़ने की। चाहे हमारा गांव में भी शहर की भांति अपने विद्यालय में वो पहुंचे और अपनी पढ़ाई को निरंतर वो रख सके, इसके लिए सरकार ढेर सारी योजनाएं लगा रही है, पूरा प्रयास कर रही है, वो सभी प्रयास कर रही है जो कि हमारे शहर में है और ग्रामीण में नहीं है, तो उसको ग्रामीण में भी उसी तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। साइकिल, निःशुल्क साइकिल उसी का एक उदाहरण है, स्कूटी एक उसी का एक उदाहरण है, पढ़ाई बीच में न रुके। तो और जो बड़े बड़े जो पीएम श्री विद्यालय हैं जो खोले जा रहे हैं, सारी विद्यालय हमारे जो बेहतर बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि बच्चा जो चीज शहर में प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो चीज उसे ग्रामीण में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा सरकार ने एक और प्रयास किया है कि हम ग्रामीण से शहर में टीचरों का हम स्थानांतरण नहीं करेंगे, बल्कि हम शहर से गांव में भेजेंगे। सरकार ने ये भी अपने मनसा के अनुरूप तय किया है कि जो नई हमारी जो नियुक्तियां होंगी वो ग्रामीण में ही होंगी पहले, और उसको एक निश्चित अवधि तक उसको ग्रामीण में रहकर अपनी सेवा करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही वो अपने ट्रांसफर के लिए शहर में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा शिक्षक, अच्छा माहौल गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को प्राप्त हो सके। और

0: उसका परिणाम निकल कर आया है। आज की डेट में हमारा जो पलायन है वो हमारा शहर की ओर पलायन जो गांव से होता है उसमें कमी आई है, और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में इसमें बिल्कुल और ज्यादा कम से कम होगा, और हमारा जो व्यवस्थाएं हैं ग्रामीण में और ज्यादा उसमें हम सुधार करेंगे, सरकार सुधार करेगी।
1: इतने प्रयासों के बावजूद भी क्या कहीं लगता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली विजन 2047 के लिए पर्याप्त है?
0: निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उसके लिए जिस तरह से प्रयास कर रही है नीचे उतरकर धरातल पर, ऐसा नहीं लगता कि यह प्रत्याशित है और ये बहुत दूर की बात है। हम उसको निश्चित तौर पे निश्चित समयावधि में हम उसे पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार हो चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, बारीकी से लगातार इसकी समीक्षा कर रही है, योजनाओं की समीक्षा कर रही है, और मैं देख रहा हूं कि विद्यालयों के टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा हमारा शासकीय विद्यालय में रहे। हमारा उद्देश्य है, शासन का उद्देश्य है बच्चा चाहे वो शासकीय विद्यालय में रहे चाहे अशासकीय विद्यालय में रहे, लेकिन बच्चा हमारा 3 साल से 18 साल तक का बच्चा जो है जब तक उसकी समझ पूर्णतया विकसित नहीं हो जाती है स्कूली शिक्षक 100% पूर्ण करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है कि हम 2047 तक हम अपने विजन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको निश्चित समयावधि में अपने विजन को 101% हम प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं और मैं ऐसी इच्छा भी रखता हूं।
1: एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, शिक्षा में तकनीक AI, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता उपयोग कितना प्रभावी है?
0: अगर देखा जाए मैडम तो ये हमारा जो कोविड का काल रहा है इसने इस जो है पद्धति को आगे बढ़ाया है। इसमें ऑनलाइन जो हमारी पढ़ाई है अभी तक ये बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालयों में ही होती थी, अब सरकार क्या है इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बेहतर शिक्षा बच्चों को दिलाने के लिए चाहे वो AI हो चाहे ऑनलाइन शिक्षा हो इसको लगातार बढ़ावा दे रही है। इसके कई फायदे हैं, फायदे उसमें इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें फिजिकली आपको परेशान नहीं होना पड़ता, आप जहां हैं वहां रहकर आप आराम से ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले समयों में जो है सरकार ने प्रतिबंध लगाया फिजिकल किसी प्रकार से पनिशमेंट के लिए, तो जब ऑनलाइन और चीजें होती हैं चाहे AI के माध्यम से हो या आप ऑनलाइन शिक्षा हो, तो इसमें ये चीजें एकदम बिल्कुल 101% समाप्त होती हैं, और इसके जरिए हम सीमित अपने प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी और बड़े ही सरल ढंग से हम प्राप्त कर पाते हैं, और अपनी सभी जिज्ञासाओं का बिना किसी डर भय के हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। आप इसके लिए सुबह से लेकर और शाम जो कार्यालयीन समय है उसके अलावा भी आप इन चीजों के माध्यम से आप ढेर सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार आप जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं करना चाहते हैं कर लेते हैं। किसी का इसमें कम होता है समय कि 45 मिनट तक अपने आपको एकाग्रचित रख पाता है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो आने वाले समय में जो कि ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसमें ये तकनीक हमारी बहुत ही अच्छी सहायक है। आप जो अच्छे बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय उन चीजों के बारे में जो उनके लिए आने वाले कॉम्पिटिशन के समय उनको जरूरत पड़ती है वो उसके लिए वो ज्यादा समय देकर अपनी चीजों को बेहतर तरीके से डीपली जाकर वो आराम से सीख सकते हैं, इसमें उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। हमने देखा है मैडम कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी शासकीय विद्यालयों में भी AI को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट विद्यालयों में भी AI के माध्यम से भी शिक्षा दी जाने लगेगी, और चूंकि ऑनलाइन तो शिक्षा दी जा रही है गवर्नमेंट स्कूलों में लेकिन AI के माध्यम से भी इसको बढ़ावा देकर जो भूख है शिक्षा की बच्चों में और टीचरों में उसको पूरा किया जाएगा।
1: संजय जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम, मुझे आपने मौका दिया, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच मैडम, नमस्कार।

2047 का सपना तभी पूरा होगा श्रोताओं, जब हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उसे आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो। आज तकनीकी शिक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है नैतिक शिक्षा, क्योंकि केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, संवेदनशील और जिम्मेदार होना भी जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल व्यक्ति बनाना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाना भी होना चाहिए। किसी भी देश की प्रगति तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक महिलाएं शिक्षित न हो और सशक्त न हो। कहा जाता है यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिला शिक्षा स्वास्थ्य सुधारती है, आर्थिक स्थिति मजबूत करती है और समाज में समानता लाती है। आज इंटरनेट और तकनीकी ने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया है। कुछ वर्षों पहले शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित थी, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान हर घर तक पहुंच रहा है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट लर्निंग ने शिक्षा को आसान और सुलभ बनाया है। गांव में रहने वाला विद्यार्थी भी अब दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों से सीख सकता है, लेकिन यहां एक चुनौती भी है, डिजिटल सुविधाओं की समान उपलब्धता। यदि भारत 2047 तक विकसित बनना चाहता है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी और शिक्षा दोनों का लाभ हर बच्चे तक पहुंचे।

0: श्रोताओं, यदि शिक्षा में ईमानदारी, अनुशासन, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को शामिल किया जाए तो भारत केवल एक विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि आदर्श राष्ट्र भी बन सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत 2047 का सपना केवल सरकार का सपना नहीं है, यह हम सबका सपना है और इस सपने की सबसे मजबूत नींव है शिक्षा। विकसित भारत की पहचान केवल उसके अर्थव्यवस्था या तकनीकी से नहीं होगी बल्कि उसके शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होगी, हमसे होगी। तो आइए हम संकल्प लें कि शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम मानेंगे, क्योंकि आज की शिक्षा ही कल के भारत का भविष्य लिखेगी। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। आपको बता दूं, इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। तो अब दे अनुमति दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को। जय हिंद, जय भारत।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम विशेष विकसित होता भारत, प्रस्तुति दीप लक्ष्मी त्रिपाठी की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं नीलम साहनी।

जानिसार अख्तर की रचना आप सुन रहे थे नीलम साहनी की आवाज़ में। इसके साथ ही सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लालतू मालाकार और साथियों के स्वर में निवाड़ी लोकगीत।

आप सुन रहे थे लालतू मालाकार और साथियों के स्वर में ये निमाड़ी लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस समय अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। संध्या के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने

0: विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानों भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शीर्ष और कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी में सुनिए जानकारी अटल पेंशन योजना पर। कविता पाठ आप सुनिए प्रकाश चंद दुबे से। इसके अलावा लोक संगीत का प्रोग्राम होगा। रात्रि 8 बजे हम लेकर आएंगे सुर्खियों में, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर दिल ने फिर याद किया आपका पसंदीदा प्रोग्राम होगा। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रगीत।

रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और अब डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल प्रातः 6:35 पर खेती की बातें में सुनिए गहरी जुताई के उपयोगी यंत्र, इस विषय पर जानकारी आपको देंगे भारती उपाध्याय। 6:40 पर सुगा श्री रामचरित मानस गान। 7:20 पर वसुंधरा में सुनिए मुश्किल नहीं अपने घर या प्रतिष्ठान में वर्षा जल संरक्षण संयंत्र लगाना। 7:35 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 सुनिए कल के सितारे बच्चे हमारे, इसमें हम आपको सुनाएंगे समर केयर क्यों जरूरी है इस विषय पर चर्चा, लाइफ जैकेट क्यों जरूरी है इस विषय पर भी जानकारी देंगे, साथ ही राष्ट्रीय भाई दिवस और विश्व कछुआ दिवस पर भी जानकारी होगी। इसके साथ ही कविता कहानी और रोचक जानकारियां बच्चे सुनेंगे। लोक संगीत में 9:00 का लगा रहे साधना उपाध्याय और साथी। 9:15 पर सुगम संगीत में सुनिए सुजाता वैशम प्यान को। 9:30 शास्त्रीय संगीत में कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, इनसे सुनिए राग तोड़ी। 10:00 जिले की चिट्ठी होगी। 10:05 पर सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

कल शाम युवाणी में युवा साथी सुनेंगी युवा तरंग में आकाशवाणी प्रसारण के 90वें वर्ष पर केंद्रित प्रोग्राम। 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार हैं उमेश भट्ट और 6:45 पर लोक संगीत में सुनिए साधना उपाध्याय व साथियों को।

कल रात्रि 9:30 बजे सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीता का प्रोग्राम मन भावन। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का मसौदा नियम प्रकाशित किए। और नौतपा से पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, 31 मई तक और बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

0: के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पर भी प्रकाश डाला।
2: सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का तो सिंगरौली का है और अब तो रेल भी चल रही।
0: डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने एवं खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस के आयोजन में भी सहभागिता करेंगे। यह 23 मई से 25 मई तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उनके राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री आज शिवपुरी में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तंस कसते हुए कहा कि राजनीति ट्रेंड से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने से चलती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया।

0: रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आगरमालवा जिले में 4 कृषि रथों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, शासकीय योजनाओं एवं कृषि आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कल जिले के ग्राम निपानिया, बैजनाथ, मालीखेड़ी, कंकडेल, रामनगर, जयसिंहपुरा सहित विभिन्न पंचायतों में तकनीकी टीम द्वारा किसानों को कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की जानकारी दी गई। अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने ट्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया के तहत शहडोल जिले में मकान सूचीकरण और नंबरिंग का काम अपने अंतिम दौर में है। जिले में अब तक 97% काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संयुक्त टीम ने कटनी जिले के विकास खंड विजय राघवगढ़ के गांवों का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं के ANC पंजीयन, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। देवास जॉब पोर्टल के माध्यम से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड द्वारा 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर देवास में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में गंगा दशहरा पर 25 मई को जिले में जल संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 112 संतृप्ति शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी
1: का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला हमारा सभी किसान भाई बहनों को संध्या कोठारी को राम राम न भाई होण। आप सब ने को यो आपको कार्यक्रम छे एमा आप सब ने को स्वागत भी छे। साथ ज में खेती किसानी का काम करें और हम हमारा अकेला भी काम करें, कुछ हम कहीं दाड़के धंधा का भी काम करें और कुछ अपनी असो भी धंधो करी सकें कि जो अपनो अकेला को होए। तो भाई होण करा सब, पर उम्र को पड़ाव छे आप सबने का तो मालूम छे, जो दिन भर जैसे सूर्यनारायण सुबह काई रह दोपहर में काई रह और शाम का काई हो जाए, ऐसी हमारी जिंदगी भी छे और इस प्रकार से हमका हमारो सोची ना हमका आगे बढ़ना चाहिए कि हम हमारा शरीर कब तक काम देगो और कब तक हम इस सब सुबह से शाम तक काम कर ही पावांगा। एक समय ऐसा रहे कि जब हम हमारे से काम नहीं भी होते हैं और शरीर काम भी नहीं करते हैं, कभी कभी काम भी नहीं मिलते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी परेशानी निशे भाई हूँ। तो हम क्यों नहीं हम हमारा जीवन को थोड़ा बहुत हम ओका सुरक्षित करता जावा। तो ऐसी यह एक पेंशन योजना छे, अटल पेंशन योजना। इन्हीं पेंशन योजना में 18 साल से लगे ना हम 40 साल की उम्र का बीच का लोग हम इन्हें अटल पेंशन योजना को लाभ ले सकें। एमा खाता धारक होना चाहिए, हम डाकघर का भी हो सकें और बैंक का भी हो सकें। और जब हमारा यो खातों खोली जाए, अगर हम 18 साल की उम्र में जो खातों भी रहे हमारो और हम इन्हीं पेंशन को लाभ भी ले लेवा, तो देखो लाभ ऐसा मिल जाएगा कि अगर 18 साल की उम्र में हम अगर ये नहीं अटल पेंशन योजना का लेवांगा तो प्रति माह 42 रुपया हमारा कटग और 40 साल की उम्र से हमक यह पेंशन लागू हो जाएगी और निश्चित रूप से 5000 रुपया हमक मिलेगा। तो इना हिसाब से इना पैसा का हिसाब से हम जिस उम्र में हुआ और जहाँ जो हमारी उम्र हुई गई हो उन्हीं उम्र में हम एक निश्चित रूप से कराड़ी लेवा भाई हूँ, थोड़ा बहुत तो हम सुरक्षित रहवा। और ये यह जो योजना छे खास तौर पर हम बता दूँ कि कोई भी आयकर देने वाला व्यक्ति इन योजना को लाभ नहीं ले सकता। हम अगर आयकर दे राज मतलब हमारी आय ज़्यादा छे जब हम सरकार के दही राज तो इन योजना को लाभ हमको नहीं मिलेगा। पर जो भी असंगठित श्रमिक छे जैसा मैंने बताया आपका कि हम अकेला मनुष्य छे ना हम हमारो काम करी रहे हैं, तो हम कहियो थोड़ो बहुत इन योजना का लाभ ले लेना चाहिए ताकि हम जब ऐसा उम्र का पड़ाव पावा तो हमको कुछ पैसों हर महीना निश्चित रूप से मिली जाए ताकि हम कोई का मोहताज नहीं हुआ और बीमार दुखी हुआ तो उनमें भी हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाए, हमारा घर चलाना में भी हमको पैसा मिल जाए और हमको कम से कम यह सुरक्षित तो रहवा कि भाई चलो इतरो पैसों तो मिलेगा, बाकी भले हम अपन कम ही लेवा और एका से ज़्यादा कमावा वो को भी कोई नई नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत पैसा की निश्चिंता हमको होनी चाहिए। तो देखो बात ना तो हम आरू करांगा ना अब सुनांगा एक लोकगीत, एक गायोज गीता पराग अन साथी नन।

0: अभी अपन ने यो लोक गीत सुनियो, इतो बढ़िया गजानंद जी को थो बहुत आनंद आयो। उम्मीद करूँगा कि आप सबने को भी अच्छो लगे होगा। इना गीत को गायो थो गीता पराग अन साथी नन। भाइयों कार्यक्रम को आगे बढ़ावांगा न अब सुनागा कविता पाठ। हमारा कवि छे प्रकाश चंद दुबे।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से प्रकाश चंद्र दुबे लेखक एवं कवि कविता पाठ हेतु कविताओं की लड़ियां लेकर आया हूं। आशा है आपको मेरी कविताएं पसंद आएगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जल संरक्षण। जल ही जीवन का आधार, इससे चलता सारा संसार। निर्मल धारा शीतल पानी, धरती माँ की अमृत वाणी। कल कल करती नदियाँ गाएं, जीवन का संदेश सुनाए। बूंद बूंद में शक्ति अपार, जल से सस्ता ये संसार। पानी की हर बूंद जीवन बनकर उभरे, पर यह सत्य तभी साकार होगा जब मानव को अपनी प्यास के पहले धरती की प्यास को पहचानना होगा। पर मानव ने भूल भुलाकर जल को बहाया यूं ही जाकर। सूख रहे सहिता के तट, प्यासे दिखते खेत और घट। ताल तलैया रोते हैं, अब बादल भी है खोते स्वर तब। धरती की सूनी सी छाती, हरियाली भी नजर न आती। जल जो कभी ऋषियों की वाणी में अमृत था, गांव की पगडंडियों पर झरने की हंसी था। जब कलकल करता झरना बहता था, तब संगीत की मधुर ध्वनि का आभास होता था। किसानों की हथेली पर जीवन का अक्षय दान था। आज उसी जल का भविष्य हमारी अनदेखी से सूखती हुई लकीरों में उलझा है। धरती ने हमें सौंपा था एक पारदर्शी खजाना। न रंग मांगा न सुगंध, बस मांगी थी थोड़ी सी संवेदना। पर हमने मन पर उदासीनता के बांध बांध लिए। आओ अब प्रण दोहराएं, जल की हर एक बूंद बचाएं। छतों पर गिरती वर्षा को घर के आंगन में उतारेंगे। सूखी धाराओं में फिर से प्रवाह का गीत जगाएंगे। वर्षा जल का मान बढ़ाए, सूखे कूप पुनः भरवाएं। जल का दुरुपयोग न करेंगे न ही करने देंगे, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं तो सभ्यता नहीं। धरती के आंचल को उसकी खोई हुई नमी लौटाएंगे, ताकि हरियाली आए प्रकृति फिर से मुस्कुराए। घर में सीधे नल के नीचे बर्तन न धोकर किसी बर्तन में पानी लेकर धोएंगे, और बर्तन का पानी पौधों में डालेंगे। जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, जन भागीदारी से गहरीकरण कराएंगे। पेड़ लगाएं, धरती सींचें, प्राणी हो या वनस्पति सबकी प्यास बुझाएं। पीने में दूषित जल उपयोग न हो, पेय शुद्ध जल का छान कर उपयोग हो। स्वच्छ रहे हर नदी किनारा, यही प्रकृति का सत्य सहारा।

जल होगा सुरक्षित प्यारा, खुशहाल बनेगा जग सारा, आने वाली पीढ़ियों के हाथों में एक स्वच्छ निर्मल कल सौंपें, जल संरक्षण का दीप जलाएं, धरती को भी स्वर्ग बनाएं, धरती को भी स्वर्ग बनाएं। अब मेरी जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है स्वच्छ पर्यावरण। आओ हम सब मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, हमारे संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण को दूर भगाएं। धरती माँ का रूप निराला, हरियाली का सुंदर माला, नीला अंबर शीतल पवन, इनमें ही मुस्कुराता जीवन। कलकल करती निर्मल नदियां, गीत सुनाती मधुर कोयलिया, वन उपवन की छांव सुहानी, प्रकृति लगे जैसे वरदानी। मानव ने लोभ में आकर काट दिए वन हंसते गाकर, धुएं ने आकाश ढका है, नदियों का भी रूप फीका है। सूख रहे हैं ताल तलैया, रोती दिखती हर अमरैया, पक्षी भी ये मौन खड़े हैं, अपने घर को कहां गड़े हैं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती का श्रृंगार बढ़ाएं, नए नए कुछ बीज बुआई कर नन्हे नन्हे पौधे लगाएं, पौधों की सुरक्षा रखरखाव का बच्चों को हम पाठ सिखाएं, जल बचाएं स्वच्छता लाएं, प्रकृति से फिर नेह बढ़ाएं, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, समय समय पर गहरीकरण कराएं, खाद के रूप में जो निकले मिट्टी खेतों तक पहुंच की व्यवस्था कराएं। बिन जल सहयोग कठिन है काम, मिलजुल कर नव चेतना जगाएं, वाहनों का उपयोग को सीमित, बिन ईंधन वाहनों से काम चलाएं। जब स्वच्छ रहेगा पर्यावरण, खुश हाल रहेगा हर जनमन, हरियाली का दीप जलाएं तब जीवन सुंदर खिलेगा, हरियाली का दीप जलेगा तब जीवन सुंदर खिलेगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ। माँ शब्द है परिपूर्ण, माँ से बड़ा न कोई दूजा, ईश्वर के बात सदैव करें हम सब माँ की पूजा। ममता के मंदिर की वो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आए जब देखें तेरी सूरत। मानव हो या पशु पक्षी, या हो कोई भी जीव, हर एक में माँ होती है जो देती बच्चों को ममता दुलार। बच्चों के इर्द गिर्द ही रहती करती उनको सच्चा प्यार, जीवन में ज्योति बनकर आ जाती है माँ, जिंदगी के सभी तिमिर हर प्रकाशवान कर जाती माँ। पति बच्चे परिवार के काम हंसते मुस्कुराते वह करती, अंतर मन की पीड़ा नहीं किसी को बतलाती, हर समय मुस्कुराती, दुख के आंसू वह पी जाती, खुशियों की फुलवारी देती, मितवीयता से घर चलाती। माँ के लिए महंगे उपहार कोई मायने नहीं रखते, बच्चे के वो भाव जो माँ के लिए दिल में रखते, जिससे बच्चों की समय समझ और संवेदना शामिल होती, माँ के लिए असली उपहार वही होता। माँ की चाहत उन्हें भी गर्म भोजन मिले, सप्ताह में काम से एक दिन आराम मिले, बच्चे माँ के काम में हाथ बटाएं, उसे थोड़ी राहत पहुंचाएं। यदि परिवार में सब मिलजुल कर करेंगे काम, आदर्श परिवार का होगा तब नाम। प्रथम गुरु माँ बच्चों को सिखाती विनम्रता आदर संस्कार, जिससे बच्चे जीवन में बनते होनहार। 9 माह गर्भ में रखकर बच्चे की लाते सहती माँ, मीठे मीठे दर्द से होले होले मुस्कुराती माँ, संतान के जन्म के साथ ही जन्म लेती माँ की परवाह। बच्चा यदि बीमार हो तो रात भर जागती रहती, कलेजे का टुकड़ा शीघ्र स्वस्थ हो भगवान से मन्नतें मांगती रहती, बच्चों के सोने के बाद उसके सिराने ही सो जाती माँ। गीले बिस्तर से सूखे में बच्चे को सुलाती है माँ, बच्चों का रखती वह ख्याल, माँ होती बच्चों की ढाल। माँ के हाथ के भोजन का स्वाद ही निराला, मसाले डालने के बाद भी नहीं बना सकता होटल वाला। वो है किस्मत वाले जिनके पास माँ है, पर ध्यान रखें माँ का तिरस्कार न हो, वाणी का कोई जख्म न दे जो माँ के दिल को छू जाए। हम माँ के दूध का मूल्य तो नहीं चुका सकते, बस उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा कर अपना कर्तव्य अदा कर सकते हैं। माँ से बात करें या उसका स्मरण, उसका लहराता आंचल आकर

0: और हमारे सिर पर छाया कर देता। अंतर मन को ज्ञात है कि जब तक माँ है तब तक सुख चैन और एक अनकहा सुकून है। जीवन में लड़ने की ऊर्जा है, हिम्मत है, उसके बाद क्या, माँ की बस यादें हैं, माँ की बस यादें हैं। अगली कविता का शीर्षक है जीवन एक परीक्षा। जीवन में परीक्षा कभी खत्म होती नहीं, बिन परीक्षा दिए काबिलियत भी निखरती नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षा ही परीक्षा, कोई क्षेत्र परीक्षा से अछूता नहीं। जीवन तो एक अनवरत परीक्षा है, जहाँ हर सांस किसी नए प्रश्न चिन्ह सी रहती। कभी उम्मीदों की फोगी उगती है मन में, तो कभी निराशा की कमी आंखों तक बहती। कभी रिश्तों की डोर ढीली सी पड़ जाती, कभी सपनों के शीश महल टूटकर बिखर जाते, कभी अपने ही प्रश्नों में खुद उलझकर मन के कोने में अनकहे दर्द के दीप बुझ जाते। जीवन का यही तो सौंदर्य है कि हर टूटन हमें गढ़ने को आती, हर रात अपने आंचल में अगली सुबह का सुनहरा स्पर्श छुपा कर लाती। चलते चलते जब पांव थकने लगते और राहें अपने ही स्वरूप पर संदेह करने लगती, तभी भीतर से कोई अदृश्य सी शक्ति कहती, यही एक क्षण तो तेरे साहस की परिभाषा गढ़ती। जीवन का हर पड़ाव हमें परखता है, ये देखते हुए कि हम टूटते नहीं बल्कि धूल झाड़ कर फिर उठते हैं कि नहीं। निराशा की दीवारों में भी कोई छोटा सा रोशनदार दान ढूंढते हैं कि नहीं। और जब हम गिरने के बाद भी फिर खड़े हो जाते हैं, तब समझ आता है कि विपत्ति नहीं, हम स्वयं अपने जीवन का उत्तर हैं। क्योंकि जीवन तो केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि ईश्वर का वह स्नेहिल प्रयास है, जो हमें बताना चाहता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। जीवन में परीक्षा कभी खत्म होती नहीं, बिन परीक्षा दिए काबिलियत भी निखरती नहीं, काबिलियत भी निखरती नहीं। अगली कविता का शीर्षक है हमारे बुजुर्गों। वे झुर्रियां जो चेहरे पर उभर आई है, समय की चोट नहीं अनुभव की मोहर है। कांपते हाथों में जो थर थराहट है, उसमें सदियों की तपस्या का स्पर्श है। वे जिनकी आंखों में आज धुंधलापन है, कभी उन्हीं आंखों ने हमारे सपनों को देखा था। जिनके शब्द आज धीमे पड़ गए हैं, कभी उन्हीं शब्दों से जीवन को दिशा मिली थी। बुजुर्ग बोझ नहीं, वे तो घर की नींव है, इतिहास की सांस है। उनकी चुप्पी में उपेक्षा नहीं, बस अपनों से एक अपनापन खोजती आस है। उनके झुके हुए कंधों पर केवल उम्र का भार नहीं, हमारे सपनों का बोझ भी रखा है। उनकी सांसों में बीते हुए दिनों की तपिश है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनकही प्रार्थनाएं हैं। उनकी हर डांट में अनुभव का प्रेम छिपा है, हर चुप्पी में टूटते रिश्तों की पीड़ा है। वे शिकायत नहीं करते, बस धीरे धीरे अपने भीतर सिमटते जाते हैं, पुरानी किसी किताब की तरह। आओ सहारा दो इन्हें अपनी बाहों कंधों का, देखना सहारे की लाठी हाथों से छूट जाएगी। सुन लो समझ लो इनके अनमोल अनुभवों को, बाद में नेट गूगल पर भी नहीं मिल पाएंगे। आओ उनके पास बैठें, उनकी थकी आंखों में अपनी कृतज्ञता उतार दें, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वहाँ ईश्वर स्वयं चुपचाप निवास करते हैं। बुजुर्गों को अपनों से अलग मत करो, उनकी सेवा करो, सहायता करो। देखना एक दिन वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। वे झुर्रियां जो चेहरे पर उभर आई है, समय की चोट नहीं अनुभव की लकीर है, अनुभव की लकीर है। ये मेरी अंतिम कविता थी, जो अब मेरी कविता पाठ मेरा समाप्त हो चुका है, और आप सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद।
1: किशन भाई अभी अपन ने यह कविता सुनी। कविता हमारा प्रकाश चंद्र दुबे। देखो अच्छी, इतनी अच्छी कविता उन्होंने सुनाई, और यो एक अनुभव है जीवन को जो ना अपन का दियो और

और इस हिसाब से अपन चला निश्चित रूप से माँ माँ है, माँ की कोई उपमा नहीं हो सकती। प्रकृति है या भी हमारी माँ है, धरती है या भी हमारी माँ है, जो हमारो पालन पोषण करी रोज, जो हमारा जीवन का बचे रोज, नर्मदा माँ आए जैसे हमारे जीवन दायनी पानी है, हमारो हमारा लेन छे। अगर इन सबको हम संजोवा, इन सबकी सुरक्षा करा, तो निश्चित रूप से ये हमारी सुरक्षा करेगा, हमारो जीवन बचावेगा और आने वाली पीढ़ी ने कभी ये सब चीज न मिली जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ावांगा न अब सुनागा एक लोकगीत, एक गायो हेमलता उपाध्याय ना।

फिर सामने हम अभी अपना ने लोक गीत सुनियो। एक गायो थो हेमलता उपाध्याय अन साथी न, बहुत ज आनंद आयो। गोपाल का काई चाहिए केवल माखन न रोटी। कार्यक्रम का आगे बढ़ावागा न, देखो आज शनिवार कुछ दिन छे न, अगर

राम जी ना हनुमान जी को नाम नहीं लेवा तो शनिवार व्यर्थ चली जाएगो। तो आज शनिवार छे तो ये कारण अपन सुनागा रामायण पाठ एक गायोज मुकेश ना।

फिर सामने हम अभी हमने रामायण पाठ सुनियो, एक गायो थो मुकेश ने। अब हमारे पास कुछ मंडी का भाव है जो आपको बते दूँ। यह संयोगितागंज मंडी का है तो गेहूँ के जो आवक रही वह रही 2441 बोरी, भाव रहो न्यूनतम 1950 और अधिकतम रहो 2790। सोयाबीन को आवक रही 691 बोरी, भाव रहो 4000 न्यूनतम न अधिकतम रहो 7445 रुपये। राजमा 26 बोरी आई, भाव रहो 3485 7300। उड़द 1 बोरी जाई जो को भाव रहो 7500 रुपया। इमली आई 61 बोरी, एको भाव रहो 2700 से अधिकतम बिकी गई है 10000 रुपया तक। मटर आई 127 बोरी, भाव रहो 3100 से 4150 रुपया। भाई हूँ ये भाव छे प्रति कुंटल का। चना की आवक रही 1091, भाव रहो 3500 से 8145 रुपया प्रति कुंटल बिकी। सरसों आई 3 बोरी, एको भाव रहो 3200 से 7600 रुपया। ये तो था भाव ना, आपसे अब से लेगा हूँ विदा, न कहूँगा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। कुछ पलों में सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जोड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार अनुभव जी।
0: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशंस के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। ये 19वां मेला था, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में ये है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, 19 से लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स है, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको

0: ये नौकरियां मिली है, उनका भूमिका क्या है,
1: जी
0: वो आगे
1: बिल्कुल
0: जाके क्या करेंगे, ये
1: जी
0: सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
1: जी ये जो आपने आखिरी बात कही इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती हैं और कैसे प्रोत्साहित करती हैं?
0: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिससे आप देश की सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां है देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते
1: जी,
0: लगातार उनके लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे, और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
1: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया, और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
2: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूँ।
1: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से ये स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है, और बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
0: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई
1: जी, बिल्कुल,
0: कि या एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि 5 कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करें अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ही सबसे ज्यादा अवसर देता है
1: जी, बिल्कुल,
0: उसमें मैरिटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और

0: सुधरेगी
1: जी
0: और लोगों को फायदा होगा।
1: शेखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
0: बिल्कुल, देखिए ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपके 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहाँ शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सब खोल रहे हैं और उसपे हमारे युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है। और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरिटाइम कोऑपरेशन की हमने बात की, वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा पीएम यहां जाने से पहले UAE गए थे, वहां स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है, और कई डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल, साइंस, टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते, जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं। ये बड़ी चेंज आई है।
1: शेखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है। ऐसा कोई एक क्षेत्र ने जहां महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को, एक क्षेत्र नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की, जो स्ट्रेंथ है, उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज, और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके वजह से जो विकसित भारत यात्रा में महिलाओं को, मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
1: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है, जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
1: जी,
0: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी Tier 2, Tier 3 वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप की आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है, और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
1: जी,
0: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए ये सारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है, आपको कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है, जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
1: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है।

0: ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
1: ज्यादातर रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
0: जी।
1: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, उसको उनको भी टैप करना है, क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है, और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे डर जाते कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निजी क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, तब ही जाके अवसर आगे आएगा।
0: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
1: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए
0: जी।
1: तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की अब बात करते हैं तो उसमें तो मेन इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कई भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउन स्ट्रीम भी होती है, एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निजी क्षेत्र उसमें आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र अब खुला गया, आपको डिफेंस खुला गया, डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया, आप देख रहे बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनी डिजाइन वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं, और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी जॉइंट प्रोडक्शन में चल रहा है
0: जी।
1: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
0: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी,
4: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कि सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, कभी कभी दिल की बात कहने के लिए जुबां साथ नहीं देती और तब खामोशी ही साथ होती है हमारे, और ये एक ऐसी खामोशी होती है जिसमें कई राज छिपे होते हैं। खामोशी में नाराजगी भी होती है और अपनापन भी, प्यार का इजहार भी और किसी का तन्हाई में इंतजार भी। सच ही कहते हैं लोग, जो बात सुबह पर ना आ सके वो खामोशी कह देती है। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं कि खामोशी क्या चीज़ है।

हर खुशी में कोई कमी सी है, हंसती आंखों में नमी सी है। दिन भी चुपचाप सर झुकाए था, रात की नब्ज भी थमी सी है। किसको समझाएं, किसकी बात करें, जहन और दिल में फिर ठनी सी है। ख्वाब था या गुबार था, कोई गद इन पलकों में जमी सी है। हसरतें राख हो गई, लेकिन आग अब भी कहीं दबी सी है।

रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया में जा गया कोई, वक्त रुखसत गले लगा कि हमें हंसते हंसते रुला गया कोई।

मैं उस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। मैं बुझ गई तो हमेशा को बुझी जाऊंगी, कोई चिराग नहीं हूं जो फिर जला लेगा। हजार तोड़ के आ जाऊं उस रिश्ता में, मैं जानती हूं वो जब चाहेगा बुला लेगा मुझे।

कुछ राज दिल के बताए नहीं जाते, उजड़े जो गुलिस्ता तो फिर बसाए नहीं जाते। महफिल में खुद को कितना भी हंसा ले हम, तन्हाई में दिल के दर्द छुपाए नहीं जाते।

मंजिल न दे, जराग न दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे। मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, लेकिन खामोश क्यों है तू, कोई फैसला तो दे। बेशक मेरे नसीब पे रख अपना इख्तियार, लेकिन मेरे नसीब में क्या है बता तो दे।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केन्द्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है।

0: दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में, शब्द रचना निदा फाजली की, संगीत उषा खन्ना का। आइए अब सुनते हैं फिल्म शंकर हुसैन का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

आप सुन रहे थे कैफ भोपाली की शब्द रचना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था शंकर हुसैन और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया खयाम ने।

महेंद्र कपूर की गाय फिल्म आज की आवाज के इसी गीत के साथ चित्रगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती हम कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में

0: आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आए। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रमाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4 से 6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिन्दुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का, उसके साथ

0: जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुब्रत के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रांग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च मिला है, इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक्ट सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट तिलका मान। रांची विश्वविद्यालय भागलपुर।
0: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना

0: शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहां पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहां से आकर के पनाह लेते हैं, वहां पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हो रही है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है।

0: अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
1: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
2: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
0: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूलमंत्र को चर्चा करते हुए देश के जन जन की आवाज़

0: स्वतंत्रता क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तथा आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विशेषता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सब में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सब के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमरीका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। He is an A-grade vocal artist of Akashwani and a highly respected performer with over two decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shrimushnam Raja Rao and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Shri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankara Narayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
3: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
1: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान

0: तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार.
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम.
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूद्री अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है.
1: श्री सीपी माधवन नंबूद्री बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल.

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार।

0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर

राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।